Jay.

0: आपका स्वागत।
1: सक्सेस की बात की थी अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों इट हैपेंस में, और उसके बाद मैंने खूबसूरत गाना भी सुना। सक्सेसफुल इंसान की बात करूं, अगर सक्सेस की बात तो कर ली लेकिन सक्सेसफुल इंसान की बात करूं, तो क्या लगता है आपको इस दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन या इंसान आप किसे मानते हैं, कौन है वो जो लाइफ में कभी गिरा नहीं, जिसने कभी फेलियर्स का सामना नहीं किया, जिसको डायरेक्ट कम उम्र में सक्सेस मिल गई, उसे कहेंगे आप सक्सेसफुल इंसान? भाई मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि वो इंसान लाइफ में सक्सेसफुल है जिसने फेलियर्स का सामना भी किया है और जो नीचे भी गिरा है, लेकिन जो गिर के उठना जानता है, गिर के गिरे रहना नहीं जानता, अपनी ज़िंदगी को कोसना नहीं जानता, भगवान को कोसना नहीं जानता, अपनी किस्मत को कोसना नहीं जानता, बल्कि उसे अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने हार्डवर्क और अपने पैशन पर भरोसा है, वो है एक सक्सेसफुल इंसान। भाई मेरे लिए तो ये डेफिनेशन है, आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, एक सक्सेसफुल पर्सन कौन है मुझे बताइए नीजे ब्रिस्वानी के हमारे फेसबुक पेज पर। और चलिए आपके लिए प्ले करती हूँ अभी ये अगला ट्रैक, इसे इंजॉय कीजिए और मुझे बताइए जरूर कौन है सक्सेसफुल आपकी नज़र में। Keep listening to Radio Brahmani.

0: दोस्तों, जिंदगी में हमें कई बार समझाने वाला नहीं, समझने वाला चाहिए होता है। हम चाहते हैं हमारे दिल में जो चल रहा है वो हम किसी से बांट सकें, लेकिन पता है हमारे आसपास के लोगों की आदत क्या होती है? इनफैक्ट किसी और की जिंदगी की बात हो तो हमारी भी आदत क्या होती है, हम उसे समझाने पहुंच जाते हैं। यार तुमने यहाँ पर गलती कर दी, यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार मुझे तो पता था, मुझसे पूछ लेती तो लाइन ही खराब है। ऐसी बहुत सारी बातें उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस पर थोपते हैं या लोग भी आप पर थोपते हैं जब आप जिंदगी के टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं या जिंदगी में कुछ स्ट्रगल चल रहा होता है या कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। देखिए, कहते हैं ना कि जिस पर पड़ती है वही समझ सकता है। वो बंदा जो है वो आपसे समझने नहीं बैठा है, वो ये चाहता है कि आप उसे समझें, आप कुछ देर उसके साथ बैठकर उसके दिल की बात सुने, उसके दिल में क्या है ये जाने, है ना? तो हमेशा समझाने मत पहुंच जाइए, कभी कभी समझने की भी कोशिश कीजिए। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: प्रिया, नेक्स्ट मंथ ममा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
10: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
9: अच्छा, वो क्या?
10: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
9: लेकिन ममा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी पर, आप है सताक्षी के साथ और सताक्षी के साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। भाई कहते हैं और ये सही भी है कि सबकी लाइफ में अच्छा और बुरा वक्त आता है। भाई इस दुनिया में कोई भी ऐसा तो नहीं है ना जिसकी लाइफ में सिर्फ अच्छा ही टाइम चलता रहे या सिर्फ बुरा ही वक्त रहे, ऐसा तो नहीं है। हम सबकी जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों वक्त आता है। अब क्योंकि जिंदगी में वक्त एक साइकिल है इसलिए ये चलता भी रहता है, यानी ना तो अच्छा वक्त बहुत दिन टिकता है और ना ही बुरा वक्त बहुत।

संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आपसे हो नहीं रहा होता है, चीजें आपके हाथ से निकल रही होती हैं, कई मौके आपके हाथ से निकल रहे होते हैं और आप उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। संभालने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब आप ये रियलाइज कर लें कि भाई चीजें नहीं संभल रही हैं, तो उन्हें कुछ वक्त के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए। हाँ, याद रखिए, विश्वास रखिए कि वक्त के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा, बस आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा जब तक वक्त खराब है। ये साइकिल है, रुक कर नहीं रह सकता, अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, यही साइकिल है, लाइफ साइकिल है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। और चलिए, इतनी खूबसूरत सी बात है हमारे वक्त पर, तो वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं भाई और इस अगले ट्रैक को एंजॉय करते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रह्मवाणी।

रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। कई बारी आप जिंदगी में इस बात को सोचकर परेशान होते हैं ना कि यार मेरी वैल्यू नहीं है इस जॉब में, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरा बॉस, मैं इतना हार्डवर्क करता हूँ या करती हूँ लेकिन मुझे वो पोजिशन नहीं देता, मुझे उस लायक नहीं समझता। वो तो समझता है कि मैं बुद्धू हूँ, है ना, वो तो समझता है कि मेरे से काम बस ऐसे ही हो जाता है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर पाता हूँ। कई बार ऐसी बातें सोचते हैं ना। देखिए ऐसा है कि सही इंसान की वैल्यू जो है वो सही जगह पर ही होती है। और अगर आपको वाकई लग रहा है कि जिस जगह पर भी आज आप हैं वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है या कोई आपकी कद्र नहीं करता है या कोई आपको समझता नहीं है, तो बेटर है वक्त रहते उस जगह को चेंज कर दें। जी हाँ, आप समझ जाएं कि वो जगह आपके लिए है ही नहीं और अपने लिए इमीडिएटली कोई नई जगह ढूंढना शुरू कर दीजिए जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ लोग आपको समझें, राइट? क्योंकि अगर आप काम ही करते रहेंगे और कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा तो यार धक्का तो लगता है, बुरा तो लगता है, राइट? इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक नई जॉब में स्विच कर लें या नए काम में स्विच कर लें, या आप अगर किसी के साथ दोस्ती में हैं तो आप, है ना, अपना रास्ता बदल लें, थोड़ा सा रिजर्व्ड हो जाएं। आप कैसे भी करके जहाँ पर, जिस जगह पर, जिस इंसान के साथ आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, उस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस और चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी आपको सुनवाते हैं ये अगला ट्रैक।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

भैया, आई होप कि आप सबके पास एक बेहतरीन गाड़ी है। हाँ, मुझे पता है कि आप इतने पैशनेट हैं कि ज़िंदगी में गाड़ी तो ले ही चुके हैं, है ना। मतलब अब तो अब आपके लिए छोटी मोटी चीज़ हो गई। तो भाई, अगर गाड़ी है तो आप एक बात से तो ज़रूर अग्री करेंगे कि गाड़ी में वाइपर्स हैं आपकी। अब उन वाइपर्स का काम क्या है? जाहिर सी बात है, आपके फ्रंट मिरर पे, आपकी गाड़ी के शीशे पे जो धूल मिट्टी है उसे हटाना, और बारिश हो रही है तो बारिश के पानी को हटाना ताकि आपको आगे का रास्ता क्लियर दिखाई दे सके। ऐसा ही होता है ना? हाँ, ऐसे ही हमारी और आपकी लाइफ में कुछ लोग भी होते हैं जो हमें ज़िंदगी की क्लियरिटी दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। और एक टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि उनमें से कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं ऑटोमेटिक, और हमें लगता है कि यार, ये बंदा जो है, क्या मुझे सिर्फ सही रास्ता दिखाने आया था? जी हाँ, बिल्कुल, वो बंदा जो है वो आपको सिर्फ सही रास्ता दिखाने, आपको लाइफ की क्लियरिटी दिखाने, या कभी कभी लोगों का सच दिखाने के लिए आपके साथ जुड़ता है। ऐसे लोगों को अगर आप जानते हैं, आप समझते हैं कि वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको लाइफ का वे, लाइफ का रास्ता, सही रास्ता दिखा रहे हैं, आपके रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू कीजिए, उन्हें समझिए। अदरवाइज अगर आज आप उन्हें नहीं समझेंगे तो आप अपनी ही लाइफ के साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। क्या समझे? उन्हें जरूर समझिए। और चलिए, ऐसे ही हमारी जिंदगी के लोगों के नाम एंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, इट हैपेंस।

वेल फ्रेंड्स, ये था आज का इट हैपेंस का सफर। आई होप कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। आज मैंने बहुत ही खूबसूरत गानों को आज की मॉर्निंग के लिए सेलेक्ट किया था। कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की बातें जो हैं वो बस दिल किया कि आपके स्ट्रगल पर, आपके एम पर, आपके गोल पर आज की बातें की जाएँ। तो सारी की सारी बातें बस वही चुनी मैंने। कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा। लेकिन आप बताएंगे कहाँ? हमारे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज से जुड़िए, जहाँ आप हमें बता सकते हैं कि आपको इट हैपेंस कैसा लग रहा है। राइट, सो चलिए अभी मुझे इजाजत दीजिए। इस वादे के साथ जा रही हूँ कि बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे। इनफैक्ट कल सुबह मिलें क्या? तो चलिए, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे, कल सुबह एक बार फिर से करते हैं आपसे मुलाकात रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर, आप ही के ब्रेकफास्ट इट हैपेंस में। और जब तक मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक यूं ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। हैव अ ग्रेट डे।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

ਸਸ਼ਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਲਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਬਸਵਾਨੀ 101.9 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੁਕਾ ਦੇ ਪਰਦੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਵ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਟ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਲੈਪਟਾਪ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ उधर मिडल ईस्ट विच काफी दिनों तो चलदी आ रही शांति अज भंग हो गई है ईरान ते इजराइल विचालों कीते गए ताजा हमलों मगरों जंग दे मुड़ शुरू होने का खतरा पैदा हो गया जिस कारण पूरी दुनिया विच मुड़ दहशत फैल गई है इसे खतरे दे मद्देनजर तहरान स्थित भारतीय एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों नू ईरान की यात्रा न करन की अपील की है इस तो इलावा जो भारतीय नागरिक पहला तो ईरान विच हन ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਈਰਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਬੈਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਈਰਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तो एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तानी फौज दा हैवान वाला रूप उजागर कर दिता है इथे चल रहे प्रदर्शनों कारण हालात बेहद तनावपूर्ण और हिंसक बने हुए ने जानकारी मुताबिक पीओके दे रावल कोट विखे एक जनाजे विच शामिल होने लई वड्डी गिनती विच लोग इकट्ठे हुए सन जिन्हां ते पाकिस्तानी फौज ने अन्नेवाह गोलियां चला दित्तियां जिस कारण घट्टो घट 27 लोग मारे गए दस्सिया जा रहा है कि शुक्रवार नूं शाजेब हसी हबीब ना दा एक प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी फौज हथों मारिया गया सी ए लोक उसे दे जनाजे लई इकट्ठे होए सन उधर फिलीपींस विच आए 7.8 तीव्रता वाले भूचाल ने बहुत तबाही मचाई इस दौरान दक्षणी फिलीपींस दे एक सूबे विच घट्टो घट 17 लोगों की मौत हो गई ज्यादातर मौतां 7.8 तीव्रता वाले भूचाल कारण जमीन खिसकण कारण हुईयां हन इस विचाले भूचाल कारण हुईयां कुल मौतां की गिनती 32 हो गई है सारंगानी सूबे के आफत निवारण अधिकारी ने दस्सिया है कि पहाड़ी शहर गलान विच भूचाल कारण जमीन खिसकण कारण घरों नूं नुकसान पहुंचा जिस कारण 13 पिंड वासी मारे गए उन्होंने कहा है कि सारंगानी विच चार लोगों के मारे जाने का कारण अजे भी स्पष्ट है उधर अमरीका ते इंग्लैंड वर्गे देशों मगरों हुण न्यूजीलैंड तो भी भारतीय भाईचारे खिलाफ प्रदर्शनां दीआं खबरां सामने आउण लगियां हन बीते दिनी ऑकलैंड के कई इलाकियां विच कंधां ते किल ऑल इंडियन वर्गे भारत विरोधी नारे देखण नूं मिले जिस मगरों उत्थे रहिंदे भारतीय भाईचारे दे लोकां विच डर दा माहौल देखिया जा रहा हालांकि इस मामले विच किसी भी भारतीय नागरिक नूं उत्थे किसी भी तरह के विरोध का सामना फिलहाल नहीं करना पिया पर उत्थों दे मायरू भाईचारे दे लोकां वल्लों दो वार नगर कीर्तन नूं रोकण दी कोशिश ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ उधर फिलीपींस के दक्षणी टापू मिंडा नाओ विच आए शक्तिशाली भूचाल तो बाद तुरंत बाद कई एशियाई देशों विच सुनामी दी चेतावनियां जारी की गई ने सोमवार सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूचाल ने देश विच भारी तबाही मचाई हुई है जिस विच हुण तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है फिलीपींस इंस्टीट्यूट आफ वोलकैनोलॉजी एंड सिसमोलॉजी मुताबिक शुरूआती भूचाल तो बाद एक घंटे तो वध समय तक झटके महसूस हुंदे रहे फिलीपींस दे राष्ट्रपति ने कहा है कि एमरजेंसी एजेंसियां नूं सरगर्म कर दिता गया है जिस विच ऑफिस ऑफ सिविल डिफेंस अते नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कौंसल शामिल है देश के अधिकारियों ने कहा है कि सारंगानी दवाओ ऑक्सीडेंटल तावितावी अते सुलू सने 9 सूबियां नूं तुरंत लोकां नूं तुरंत उच्चे स्थानां ते जाण लई कहा गया है उत्थे ही इंडोनेशिया विच भी उत्तरी
सुलावेसी उत्तरी गोरंटालो सूबे अते सांगीहे टापुआं दे कुछ हिस्सिआं लई वी खाली करन दे उन्हां नूं आदेश दित्ते गए ने ते निवासियां नूं उच्चे थां ते जाण दी अपील कीती गई है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਹੈ biswani@biswani.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਸੋਨੀ ਵੰਸਾ ਨੂੰ ਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही।
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

आदाब जी, सत श्री अकाल जी। तुसीं बने होए हो जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी 101 FM ते जी आर चे संदेश शौलक दे नाल तुसीं बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहणा चवला शुरू हो चुका है जी। तेरां गल्लां नूं सरगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का, तुसीं की गाणा है, तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसोनी 101 FM साडा फेसबुक पेज है जी, ते bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसीं उह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुणे वापस आउंदी आ, जाना कितें भी नहीं, क्योंकि गल्लांबातां दा सिलसिला साडा इसे तरह दे नाल जारी रहूगा। तुसीं जुड़दे रहो ते गाई ते सुणदे रहो गीत, ते नवें पुराने हर तरह दे पंजाबी गीत सुने ही भेजो बस अपने।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सर वन एम ते जी आरचे संदेश शोलक दिनाल सीम बने हुए हो। देखो गल अज नब्बे दे दहाके दी करते हैं तो नब्बे दे दहाके विच ना बॉलीवुड विच एक्शन दा एक नवा ही दौर चल रहा है। सुनील शेट्टी इस दौर के सब तो वड्डे हीरो बन के उभरे से। उन्होंने अपनी पहले ही फिल्म विच साबित कर दिता सी कि वह इंडस्ट्री ते राज करन लई बने हुए ने। सुनील शेट्टी दी फिल्मों का क्रेज इन्ना सी कि सिंगल स्क्रीन थिएटर के बाहर लंबिया लाइना कदे खत्म ही नहीं हुंदियां सी। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ फिल्म अजिहियां हैगियां ने जिन्हां दे विच जिन्हां ने उन्होंने ना सुपरस्टार बना दिता ते जिन्हां दे विच दो तां अजिहियां हैगियां ने जो बॉक्स ऑफिस जबरदस्त सफलता हासिल करने विच कामयाब रही सी। पैसे गिनन दा भी समय नहीं बचिया सीगा उन्होंने कोल। हम तुसी सोच रहे होंगे कि फिल्मां दी गल कर ली है पर फिल्मां दसदी है या नहीं। दसदी सब बारे दसूंगी पर पहला सुन लो तुसी गीत।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए हूँ। गल करते हैं सब तो पहला केड़ी फिल्म का नाम आता है सुनील शेट्टी की। जदों जदों सुनील शेट्टी का जिक्र होगा ना उदो 90s की एक फिल्म का जरूर नाम आऊगा। जी जी जी, 90s की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों की गल आती हैगी है तो नाम मोहरा का ही होंगे ना, सुनील शेट्टी की है। सुनील शेट्टी ने विशाल का रोल किया जो इंसाफ पाने लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह फिल्म 1994 की दूसरी सब तो वड्डी हिट सी। इसकी कमाई ने ट्रेड पंडिता भी हैरान कर दिया। फिल्म के गाने से सुनील अक्षय की जोड़ी ने अजिहा जादू किया कि मेकर्स के लिए ना पैसे छापण वाली मशीन साबित हुई सी।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेस सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रेस सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। बॉर्डर टू जो रिलीज हुई सी ना ता नो डाउट बहुत सोहनी है बॉर्डर टू, पर बॉर्डर वन का जिक्र हुंदा रहा सी क्योंकि बॉर्डर वन ना ओदा दा कोई जवाब ही नहीं। जेबी दत्ता दी इस फिल्म ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस से धूम मचाई बल्कि इंडियन सिनेमा दी सब तो वड्डी कल्ट देशभक्ति फिल्म दे विचों एक बन गई। सूबेदार भैरव सिंह दा सुनील शेट्टी दा रोल अज भी अखा विच हंजू लिया दिंदा है। बॉर्डर उस साल दी सब तो ज्यादा कमाई करन वाली फिल्म बनी सी। उस साल यानी कि 90s दी गल करिए तां 1997 दे विच आई सी इह फिल्म, जिसने थिएटर थिएटर नूं ना महीने तक हाउसफुल बना दिता सी। हाउसफुल दे साइन दिखण लग गए सी थिएटर्स दे विच बहुत सारे महीने तक। इस फिल्म ने मेकर्स नूं जिंदगी भर दी कमाई करा दिती सी।

0: हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल सुपने हुए हो। कुछ को गाने अजे हुंदे है गिने ना कि वो भी सदा बहार रह जाते हैं। तो एक गाना है गाए धड़कन धड़कन, बहुत ही सोहना गाना है गाए, बहुत ही ज़्यादा सोहना। तो गल भी इतने फिल्म धड़कन की हो रही है, 2000 आई सी, साल 2000 फिल्म ना सुनील शैटी की फिल्म। सुनील शैटी सिर्फ एक्शन तक ही सीमित नहीं सी, धड़कन ने साबित कर दिता सी। उन्होंने देव दे नेगेटिव पर इमोशनल रोल दे लई फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड हासिल किया सी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा परफॉर्म किया सी, जिस नाल सुनील दी जो बहुत सारे अलग अलग किरदार कर सकते ने सुनील शेट्टी, ये साबित कर दिता सी, क्योंकि नैगेटिव रोल दे विच भी वह बहुत ही ज़्यादा फब्बे सी। नैगेटिव नहीं, ग्रे शेड कह सकते हैं। बाकी तुहानू की लगता है, तुसीं दसो।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे June 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुँचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेज, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ ਬੋਤਲ ਔਰ ਕਾਰਟਨ ਪਰ 10 ਸੈਂਟ ਕਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਮ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਖਰਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਮੇ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही।
4: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

हां जी तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने संदेश चौलक बने हुए। एक डबल रोल वाली फिल्म भी आई सी सुनील शेट्टी दी बहुत सोहनी सी 1994 आई सी नाम से जी गोपी किशन मेरे दो दो बाप ये डायलॉग आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी ने डबल रोल निभाया सी जिस विच उन्हां दा कॉमेडी टाइमिंग दिखाई गई सी। ये फिल्म सरप्राइज हिट रही है ते सुनील शेट्टी दा स्टारडम ते होर ज्यादा वधिया सीगा। गोपी किशन फिल्म इन्नी ज्यादा शानदार सी ना इन्नी ज्यादा शानदार कि अज भी तुसी उसनु देखन बैठोगे ना तो आई एम श्योर तुसी जरूर कहोगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है कि है ते जे तुसी देख ली है कि है तो तुसी मैनु मैसेज करके जरूर दसो।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नूं छू जाण वाली अते रूह नूं हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनूं सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नूं तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love Thee Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love Thee Song in cinemas this Eid ul Adha, May 27th.
5: Drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
6: Containers
5: for 10
6: for change
5: cents today.
6: के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
7: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
8: मेरे राह दी मकामा नाल पक ठक सहज

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन क्वाइन कहंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Ke alam mein nasha ho jab tere rukhsar dekhu, khuda ne jab tarasha hoga wo asrar dekhu. निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: समझ। कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
4: 0400-234-235.
5: Get ready, Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13।

ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल। ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ओर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, ओम्स ओर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल। खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ओर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, बुलंदगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
2: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: आएगा

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और सबसे पहला सवाल, कैसे हो आप, कैसा फील कर रहे हो। ट्यूसडे का दिन है, बहुत सारी इंस्पिरेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, मोटिवेट हम आपको करने वाले हैं, क्योंकि अब मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो कि जल्द ही होने वाला है, जिससे आपको काफी मोटिवेशन मिलने वाली है। क्यों, क्या है माजरा, वो तो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है जी, हाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कैसे होती है। अगर आप मेरे लिसनर हो जो कि हमेशा मेरे प्रोग्राम को सुनते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कि कैसे होती है। पर चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आप और हम करते हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत, क्योंकि हम हेल्दी रहना चाहते हैं फिजिकली एंड मेंटली, और उसके लिए ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो आइए सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आप भी ट्राई कीजिए, जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं, और किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, आई मीन इट, तो आप ये कीजिए, आपको फर्क महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ ये अच्छी हमारे लिए करती है। सो या, इसी के साथ यहाँ पर अब जरा करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत बढ़िया से गाने के साथ। और जो सबसे पहला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, या जो सबसे पहली वाली स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, जिससे हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट एंड वरुण धवन मिले थे, उसी से, लाइक बैक इन 2012 एंड 2013 में जो मूवी रिलीज हुई थी उसी की मैं बात कर रही हूँ। एंड 2012 में ये मूवी रिलीज हुई थी, और उसी वक्त इसने सबको दीवाना बना दिया था। जी हाँ, क्यों, वेल वो तो अगर आपने मूवी देखी होगी तभी आपको पता चलेगा। लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 वैसी नहीं थी, वो उतना इम्प्रेस नहीं कर पाई थी ऑडियंस को। लेकिन आइए बिना किसी देर के करते हैं शुरुआत एक बढ़िया से गाने के साथ, क्योंकि ये गाना आपको डांस करवा सकता है, तो उसके लिए रेडी हो जाइएगा। इनकेस आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज डांस करने में कोई बुराई तो है नहीं वैसे।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत तो मैंने कह दिया था कि जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आपको मोटिवेट करने के साथ स्ट्रेस मुक्त भी करने वाले हैं और आपको फन भी करवाने वाले हैं। सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटिवेट ही करते रहेंगे, आपको मजे भी दिलवाएंगे, आपको फन भी करवाएंगे। और अब आपको मौसम का हालचाल भी बताएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है मौसम का हालचाल जानना जरूरी है। और मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मौसम जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि बिना छाते, बिना रेनकोट या बिना ऐसी किसी चीज के बाहर मत निकलिएगा जो आपके बारिश में हेल्प करती है। जी हाँ, सो यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर आज रहा, और वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 20.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है, फील आपको 20.9 डिग्री सेल्सियस के करीब हो रहा है। वहीं रात के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बारिश जो है वो पूरी तरह से दस्तक दे सकती है, और ये जो दस्तक वो पूरी तरह से देने वाली है ये रात 10 बजे से देने वाली है। और तो उससे पहले कहीं पर बारिश होगी, कहीं पर नहीं होगी, कहीं पर थोड़ी सी ज्यादा होगी, कहीं पर थोड़ी कम होगी, कहीं पर बिल्कुल ही बूंदाबांदी होगी। लेकिन आप मुझे बताइए आपके इलाके का हाल क्या है। जी हाँ, क्या आपके इलाके में हो रही है बारिश या नहीं हो रही है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, जरूर बताइएगा। इसी के साथ एयर क्वालिटी बनी हुई है एकदम एक्सीलेंट। और ये तो थी आज की बात, लेकिन अब अगर कल की बात की जाए यानी कि वेडनेसडे की, तो 15 डिग्री सेल्सियस रात को टेम्परेचर रह सकता है, विद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन में रहेगा, और 80% चांसेस है बारिश के भी। जी हाँ, जैसे आज 1 to 5 mm बारिश होने के चांसेस हैं, वैसे ही कल भी हैं। थर्सडे को भी जो है वो 80% चांसेस हैं विद 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उसके आगे भी मैं बारिश देख पा रही हूँ। सो मैं कह रही हूँ कि बारिश जो है वो आपको थोड़ा बहुत जो है वो दे सकती है सांस लेने का मौका, लेकिन यहां पर मैं देख पा रही हूं कि बारिश मुझे होती हुई नजर आ रही है। अब आपको पता ही है कि बारिश यहां पे होती हुई नजर आ रही है, तो उसका मतलब यही है कि कहीं पर थोड़ी ज्यादा, कहीं पर थोड़ी सी कम, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं। जी हां, ऐसे भी इलाके होंगे जहां पर बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है ऐसा बहुत कम होने के चांसेस है। सो लेट्स सी क्या कहती है बारिश। लेकिन आज बारिश हो रही है और होगी रात को और भी ज्यादा, इतना मैं आपको कह सकती हूं। ये है बारिश का हाल, ये है मौसम का हाल, जो कि एकदम बारिशाना है और मस्ताना है। हाँ, मतलब बारिश और बॉलीवुड एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से जाते हैं। तो आइए जरा एक और बढ़िया सा गाना हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश

0: ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, यानी कि आपके फेवरेट गाने, अजीज गाने जो आप फरमाइश करते हो, रिक्वेस्ट करते हो हमारे इस प्रोग्राम में, और हम उन गानों के साथ आपको और भी अच्छे से एंटरटेन करते हैं। मतलब आपका पार्टिसिपेशन सर्वोपरि है। सो व्हाट आर यू गोना डू, आप अपना फोन उठाएंगे और नंबर डायल करेंगे और वो नंबर है +91 8288 7 1 7 0 1। आई रिपीट, +91 8288 7 1 7 0 1। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और अगर आप चाहते हैं किसी को स्पेशल फील करवाना, जी हाँ, और उनको गाना डेडिकेट करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो जल्दी से फोन उठाइए क्योंकि आपको देर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना जल्दी उतना अच्छा है। यहाँ पर हमारी तरफ से एक और बहुत ही बढ़िया सा गाना, मतलब एकदम खतरनाक सा बवाल सा गाना आपके लिए।
3: हो आज खुशी का दिन है।

0: जी हाँ दोस्तों, आप बोलोगे कि नीवा शर्मा तुम हमें मोटिवेशन देने वाली थी, वो क्या थी? वेल, मोटिवेशन मैं आपको देने वाली थी एलन मस्क के साथ। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि कैसे स्पेसएक्स अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है और उसकी वैल्यूएशन होने वाली है कुछ 1.77 ट्रिलियन के बराबर। जी हाँ, आपने सही सुना। एंड गेस व्हाट, एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े ट्रिलियनर बनने वाले हैं अभी एक हफ्ते में। आपने सही सुना। अब इससे ज्यादा बड़ी मोटिवेशन मुझे नहीं लगता मैं आपको दे सकती हूँ। ट्यूसडे है आज, मुझे पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है वो आप बड़ी मुश्किल से निकालते हो। आपको लगता है कितना काम करना पड़ता है, ये मैनेजर की चिक चिक, ये बॉस की पिक पिक, ये कितना मतलब हमारा सर दर्द हो जाता है, राइट? बट वो सर दर्द के साथ आपको अपने गोल्स को अचीव करने की इंस्पिरेशन भी मिलती है। जी हाँ, मतलब अगर वो बॉसेस, वो मैनेजर्स, वो टीम लीड्स आपको परेशान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी जो है वो चिल करने की ही वो दुनिया है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप चिल करना चाहते हो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ की क्वालिटी को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, हमेशा फन करना चाहिए, हमेशा अपनी जिंदगी के पलों को जीना चाहिए और हर वक्त जीना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि अगर आपने कोई गोल सेट करे हैं, आप एम्बिशियस हो, तो उन एम्बिशंस को आप भूल जाओ या सिर्फ और सिर्फ उनकी प्लानिंग करते रहो। एग्जीक्यूशन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड आई थिंक एलन मस्क जो है वो सबसे बड़ा एग्जांपल है। मतलब आप देख सकते हो कि वो ट्रिलियनर बनने वाले हैं। मतलब जितनी जल्दी उनकी नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है दुनिया में किसी की भी नहीं हो रही है। एंड गेस व्हाट, नंबर वन पे वो है लेकिन नंबर टू पे जो है उनके और उनके बीच बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मतलब वो डिफरेंस अगर पार भी करना चाहे कोई तो भी नहीं कर सकता। जी हाँ, ऐसा डिफरेंस हो गया है। सो एलन मस्क की जो स्पेसएक्स है उसका डेब्यू होने वाला है नजदाक में June 12, 2026 को, और वैल्यूएशन मैंने आपको बताया कुड रीच अराउंड 1.77 ट्रिलियन, एडिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस मोर टू मस ऑलरेडी मैसिव फॉर्च्यून। जी हाँ, मतलब ऑलरेडी वो इतने ज्यादा अमीर हैं कि अमीरियत भी फीकी पड़ जाए, लेकिन यहां पर जो है उनकी अमीरियत बढ़ने वाली है। और खास में स्पेसएक्स में लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही है अर्थ के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। सो ऐसे में ह्यूमंस को प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने का जो सपना है, जो एम्बिशन है, जो एलन मस्क ने देखा है, उसके पीछे वो लगे हुए हैं और उसको चेज करने में उनकी हेल्प करने वाली है ये वैल्यूएशन। सो अगर आप भी मार्केट में इंटरेस्टेड है, आप भी स्पेसएक्स के आईपीओ में इंटरेस्टेड है, तो अपनी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि June 12 को ये होने वाला है जितना मैं अभी देख पा रही हूं। और उसके हिसाब से आईपीओ में क्या आप लोगों को भी हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वी डोंट नो। लेकिन अगर आप इसमें आजमाना चाहते हैं अपना हाथ, तो लगे रहिए और देखते रहिए और नजर बनाए रखिए। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: लास्ट मिनट पैकिंग पैनिक, लीविंग फॉर पेरिस टुमारो, बट बिफोर दैट अ क्विक रूट टच अप।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मैं एक मीम देखती हूँ और उस मीम को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लिसनर्स के साथ इसे शेयर करना है। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, हमें बहुत मजा आता है जब तुम यहाँ वहां से मीम्स उठाकर लाती हो और हमें सुनाती हो, क्योंकि मजा तो मीम्स में ही है। आई मीन यू आर राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी अगर कहीं पे है इस वक्त तो वो है सोशल मीडिया पर, एंड दैट टू इन द वे ऑफ मीम। जी हाँ, सो वहां पे लिखा हुआ था कि डैड आई वांट टू मैरी समवन। जी हाँ, सो ये कॉन्वर्सेशन है एक फादर सन के बीच में। तो जो सन है, जो बेटा है, वो अपने पापा से कहता है डैड आई वांट टू मैरी समवन। तो सामने से पिताजी कहते हैं ऑल राइट, से सॉरी। तो बेटा कहता है व्हाई? तो डैड कहते हैं जस्ट से सॉरी फर्स्ट। तो बेटा कहता है ओके डैड आई एम सॉरी। तो उसके डैड कहते हैं नाउ यू आर रेडी फॉर मैरिज माय सन, योर ट्रेनिंग इज कंप्लीट, यू लर्न टू से सॉरी विदाउट एनी रीजन। तो बेटा देख रहा होता है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है आई एम सॉरी। तो उसके डैड कहते हैं नाउ यू आर रेडी फॉर मैरिज माई सन बिकॉज योर ट्रेनिंग इज कम्प्लीट, यू हैव लर्न टू से सॉरी विदाउट एनी रीजन। जी हाँ, सो मतलब यहाँ पर ये सिखाने की कोशिश हो रही है कि जो मंदे लोग हैं शादी में, उनको जो है वो विदाउट एनी रीजन जो है वो सॉरी बोलना है। गलती किसी की भी हो, अगर आप सॉरी बोल देते हो तो सारी सारी चीजों का समाधान हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसे सॉरी बोलते रहते हो तो एकदम हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ हो जाती है आपकी? और अगर आप सॉरी नहीं बोलते तो आपको भी लगता है कि काम खराब हो जाता है? जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह, नाउ आई एम नॉट मैरिड, आई डोंट नो अबाउट इट, बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं आई थिंक इसमें सच्चाई है। सो टू ऑल द फीमेल लिसनर्स, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड्स भी बिना किसी रीजन के जल्दी से सॉरी बोल देते हैं ताकि उनको जल्दी से समाधान करना होता है, उनको वो सारा का सारा पंगा जो है उसको खतरनाक तरीके से जल्दी से निपटाना होता है कि बस अब ये विवाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और टू आई मेल लिसनर्स, क्या आप भी ये करते हो? क्या आप अपने हक के लिए डिबेट करते हो? जी हाँ, जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों एक चीज के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। बात थोड़ी लंबी है तो ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जरा हमारे साथ बने रहिएगा। बात मैं कर रही हूँ कि इंसान क्या चीज है, मतलब हम सब क्या चीज है। मतलब हम तरक्की करने के चक्कर में अपना काम खराब कर लेते हैं। जी हाँ, एक्सक्यूज माई गला, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई गला। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इंसानों के बारे में और उनके द्वारा क्रिएट की गई मुश्किलात के बारे में। जी हाँ, इंसानों को लगता है कि उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन को निकालने के चक्कर में चार और मुश्किलात को बढ़ावा दिया है। जी हाँ, अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो अगेन AI के बारे में है। और AI क्या है? वेल, ऑफ कोर्स आपको पता है AI क्या है। AI वो है जो आपका काम आसान करता है, और वो काम आसान आपको इतना अच्छा लगता है, आपको लगता है वाह, मतलब हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, हमको कहीं ना कहीं अपने बहुत ज़्यादा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी तो हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? मतलब AI आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कर देता है, लेकिन वो किस कॉस्ट पे करता है क्या आपको पता है? मतलब हमने AI को क्रिएट किया ये सोच के कि AI विल हेल्प अस, लेकिन अब AI जब हमारी जॉब्स रिप्लेस कर रहे हैं तो हमको बुरा लग रहा है। हमने AI को क्रिएट किया ये सोचकर कि ये हमारे लिए हमारा होमवर्क कर देगा, लेकिन अब वही AI हमारा पानी चूस रहा है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि पानी नहीं, आई डोंट नो आपने इस बारे में सुना है या नहीं सुना है, लेकिन AI डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी की जरूरत होती है। आपने सुना होगा इसके बारे में, राइट? मतलब डाटा सेंटर्स जब भी बनते हैं उनके आजू बाजू बहुत ज्यादा पानी होना चाहिए। एंड गेस व्हाट, नॉट द नॉर्मल वाटर, मतलब कोई समुद्र का पानी या कोई ऐसा पानी नहीं, फ्रेश वाटर की यहां पर बात हो रही है। मतलब AI डाटा सेंटर्स चलते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर। फ्रेश वाटर क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं, दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू। एंड आई एम गोना टेल यू कि वो जो एक सर्च आप ChatGPT पे करते हो वो हमें क्या कॉस्ट करती है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको AI का इस्तेमाल कितना करना है, क्योंकि ये जब आपको पता चलेगा आपको लगेगा कि क्या हमें पता ही नहीं था, मतलब ऐसा हो रहा है हमारे साथ। आपने शायद ये सुना था कि World War IV, जो अगली वर्ल्ड वॉर होने वाली है, वो पानी के लिए होगी। well, पहले मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा मतलब अजीब मतलब आइडिया है, आई डोंट नो किसने बोला था ये, मतलब हमारे पास काफी पानी है, राइट? लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सच में अगली वर्ल्ड वॉर जो है वो पानी के पीछे हो सकती है, क्योंकि AI डाटा सेंटर्स हमारा पानी बचने ही नहीं देंगे, तो पानी होगा नहीं, तो इंसानों को तो पानी चाहिए, राइट? AI डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए पानी चाहिए, लेकिन AI डाटा सेंटर्स के बिना भी इंसान जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पानी के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकते। नाउ लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एंड कैसे हमारा पानी जो है वो कंज्यूम करते हैं AI डाटा सेंटर्स। सो अगर आप लोगों को पता होगा तो बढ़िया बात है, लेकिन इन केस आपको नहीं पता है, लेट मी टेल यू, जो AI डाटा सेंटर्स होते हैं और जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं जो कि हम क्वेरीज करते हैं, उनकी सारी की सारी कैलकुलेशंस होती है GPUs एंड TPUs पे, और उन GPUs एंड TPUs को एक दूसरे पर प्लेस करके रखा जाता है। जी हाँ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेकिन वह जब उन्हें रखा जाता है वहां पर तो वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। जी हाँ, अब वो जब बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं तो वो ठंडे रहे, इसके लिए उन GPUs और TPUs के ऊपर पानी को रखा जाता है ताकि वो इवेपोरेट हो सके और वो उन GPUs और TPUs को ठंडा रख सके। जी हाँ, इतनी बात आपको समझ आ गई, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट नंबर, मतलब ये तो सिर्फ GPUs और TPUs को चलाने की बात हो रही है, मतलब वो जो कैलकुलेशंस की बात हो रही है, इसके अलावा भी AI डाटा सेंटर्स में बहुत सारी चीजों के लिए पानी की जरूरत होती है, बहुत सारी बिजली की जरूरत होती है। चलिए बिजली तो हम बना भी लेंगे, लेकिन पानी अगर एक बार खत्म हो गया दुनिया से, धरती से, तो कहां से लाएंगे? जी हाँ, नाउ लेट मी टेल यू द फिगर्स, द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ। जैसे मैंने कहा था कि बात थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो पहले मैं आपको गाना सुनाऊंगी और फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे।

जी दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं डेटा सेंटर्स एआई और वो एक कैलकुलेशन, वो एक क्वेरी जो आप करते हो चैट जीपीटी से और किसी भी एआई टूल से, वो क्या कॉस्ट करता है हमें। जी हाँ, सो आज हम बात कर रहे हैं ऑफकोर्स एआई की और एआई द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स की। वेल, इट्स नॉट जस्ट अ जॉब लॉस और AI हमें रिप्लेस कर रहा है, दैट इज नॉट जस्ट अबाउट इट। AI हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है वो तो एक चीज है, लेकिन AI हमारा पानी चूस रहा है वो दूसरी चीज है। जी हाँ, इसी के साथ जैसे मैं आपको बता रही थी कि वो GPUs और TPUs यूनिट्स जो होती हैं जिनमें इस पूरी की पूरी कैलकुलेशंस को किया जाता है, उन क्वेरीज को किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती हैं। जी हाँ, सो जब भी AI डेटा सेंटर्स में कोई भी चीज़ कैलकुलेट होती है वो हाई एंड GPUs एंड TPUs में होती है और वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती हैं, और वो हीट जो है उसको ठंडा करने के लिए, उसको कम करने के लिए डाटा सेंटर्स पे पानी रखा जाता है सो दैट इट कैन इवेपोरेट एंड इट कैन कूल डैम डाउन। जी हाँ, उनको वो कूल कर दे, उनको वो ठंडा कर दे। नाउ अब बात कर रहे हैं हम फिगर्स की। जी हाँ, लेकिन फिगर्स से पहले मैं आपको बता दूं कि सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि चैट जीपीटी यूजेस 0.3 ml ऑफ वाटर पर क्वेरी, बट इट्स नॉट दैट, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उस कैलकुलेशन के लिए जो पानी यूज हुआ है उसकी बात कर रहे हो। बट व्हाट अबाउट द मेकिंग ऑफ GPUs एंड TPUs? व्हाट अबाउट द यू नो AI टूल्स और वो जो AI को जो ट्रेन कर रहे हैं उन सारी चीजों के लिए? जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर दैट, एवरीथिंग कम्स विद वाटर। जी हाँ, अगर पानी यूज नहीं होगा तो इनमें से कोई भी चीज जो है वो हो ही नहीं सकती। नाउ लेट मी टेल यू, जो उन्होंने फिगर दी थी वो थी 0.34 वॉट आवर्स पर क्वेरी यूज करता है चैट जीपीटी। जी हाँ, सैम ऑल्टमैन ने कहा था। और पानी की अगर बात करें तो 0.32 मिलीलीटर पर क्वेरी वो यूज करता है, लेकिन ये इससे ज्यादा है। जी हाँ, इसी के साथ ये भी कहा गया है कि AI डाटा सेंटर्स जो है कुड कंज्यूम 1.68 बिलियन लीटर्स बाय 2028। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समुद्र का पानी जो कि हमारे पास भर भर के पड़ा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेश वाटर। जी हाँ, आई मीन आप खुद ही सोच लीजिए। यहाँ पर सैम ऑल्टमैन और चैट जीपीटी ने यह भी कहा है कि 100 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो चैट जीपीटी यूज करता है। जी हाँ, हर दिन जो है वो चैट जीपीटी जो है वो 100 मिलियन लीटर्स जो है वो फ्रेश वाटर यूज करता है। बट इट्स नॉट जस्ट दैट, अगर एक्चुअल फिगर्स की बात करें तो इट्स 148 मिलियन लीटर्स। जी हाँ, 148 मिलियन लीटर्स। अगर हम बात करें एक बहुत बड़े, मतलब यूके की बात करें तो यूके के जितने घर जो है वो एक दिन में यूज करते हैं पानी, वो सारा का सारा पानी जो है वो एक डाटा सेंटर जो है वो यूज कर लेता है चैट जीपीटी का। या यू हर्ड मी राइट, और यही चीज जो है वो हो रही है। नाउ अब एक और सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। देयर आर सम एग्रीकल्चर फर्म्स जिनको अपनी एग्रीकल्चर जो है वो बंद करनी पड़ी, उनको अपना काम बंद करना पड़ा, बिकॉज अपेरेंटली AI डाटा सेंटर्स को पानी चाहिए, एग्रीकल्चर नहीं हो रही है क्योंकि AI डेटा सेंटर्स को पानी चाहिए। आई मीन, कैन यू इवन बिलीव दिस? आई कांट। वेल, जब तक मैंने इसके बारे में पूरी तरह से रिसर्च नहीं की थी, आई वॉज लाइक ओके ठीक है, मतलब AI हमारे लिए काम करता है, बट वो किस कॉस्ट पे करता है, किस कॉस्ट पे करता है? इमेजिन वी हैव क्रिएटेड AI टू डू आर होमवर्क। जी हाँ, लेकिन हम उस होमवर्क के लिए जो पानी जो है जो वो AI लेगा उसको तो हम देख ही नहीं रहे, राइट? मतलब AI हमारा सारा का सारा पानी अगर ले लेगा तो हम खाएंगे पिएंगे क्या? वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होमवर्क कर रहा है, लेकिन वो होमवर्क किस कॉस्ट पे आ रहा है? एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू ईट समथिंग, वी हैव टू ड्रिंक वाटर, लेकिन वो सारी की सारी चीजें पानी से होंगी। लेकिन अब आप गेस कीजिए कि पानी हमारे खाने के लिए आएगा, हमारे खाने को उगाने के लिए आएगा, इन AI डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए आएगा। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये यू नो AI जो डेटा सेंटर्स हैं और जो एक क्वेरी आप किसी AI टूल से करते हैं, दैट इज वे वे मोर डेडली ऑन AI पे। जी हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अ सर्च ऑन चैट जीपीटी रिक्वायर्स 10 times मोर एनर्जी देन द सेम सर्च ऑन गूगल। सो अगली बार से जब भी आपको कुछ सर्च करना हो, आपको लग रहा हो कि ओके मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ सर्च करने की जरूरत है, तो यूज गूगल और एनी सर्च इंजन रादर देन यूज
यूजिंग अ एआई टूल. मतलब एआई टूल्स का इस्तेमाल तब तक मत कीजिए जब तक आपको लगेगी ओके ठीक है गूगल इसका जो है वो इंतजाम नहीं कर सकता, कोई और सर्च इंजन इसका इस्तेमाल नहीं कर इंतजाम नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एआई कर सकता है, देन ओनली यूज एआई. हम एआई को ऐसे यूज करते हैं कि ओके ठीक है हमको पानी पीना चाहिए, हाँ ठीक है हमको सुबह में क्या खाना चाहिए, ये सब आपको एआई बता रहा है, लेकिन वो एआई पानी आपका फ्रेश वाटर ले रहा है जी हाँ, वो क्वेरी को सॉल्व करने के लिए. इमेजिन. सो इट्स हाई टाइम कि आपको पता हो कि ये जो एआई आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे रहा है वो किस कॉस्ट पे दे रहा है, और आप ये भी डिसाइड कीजिए कि आपको पानी पीने के लिए चाहिए या इस एआई के होमवर्क को करने के लिए चाहिए. मतलब वो जो होमवर्क एआई आपके लिए कर रहा है वो उसके लिए चाहिए. आप अपना होमवर्क पहले भी कर रहे थे, खुद भी अभी भी कर सकते हो, लेकिन पानी अगर चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
12: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
11: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
12: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
11: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
13: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
14: अच्छा, वो क्या?
13: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
14: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
13: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
15: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
16: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
15: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
16: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
15: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
16: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
15: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
16: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बर्थडे विश कर लेते हैं दो अभिनेत्रियों को. और दोनों ही अभिनेत्रियां जो हैं अपने आप में बहुत ही इन्फ्लुएंस रखती हैं इंडिया पे और इंडियन ऑडियंस पे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सोनम कपूर एंड अमीषा पटेल. मतलब अमीषा पटेल ने जब एंट्री मारी थी तो उन्होंने दीवाना बना दिया था सबको. उन्होंने कहूँ ना प्यार और गदर की और लोग उनके दीवाने बन गए. मतलब लोग उनके वो सहम सहम के रोने के दीवाने बन गए. जी हाँ, मतलब उनकी जो ये अदा है उसको आज भी लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले अमीषा पटेल और उसके बाद सोनम कपूर का भी है आज जन्मदिन. सो सबसे पहले अमीषा पटेल, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से. रेडियो ब्रिसवानी की तरफ से हम यही कहेंगे कि आपकी गदर ने फिर से गदगद कर दी थी आपके फैंस के दिलों में. और ऐसे ही आप जो है अपने फैंस को एंटरटेन करते रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए और ये साल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहे, हमारी यही कामना है. अब सोनम कपूर जी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सोनम कपूर जी के लिए तो ये कुछ साल बहुत ही अच्छे रहे हैं. मतलब उन्होंने अपने पर्सनल फ्रंट पर बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है. जी हाँ, वो दो क्यूट क्यूट बेबीज की मॉमी बन गई हैं. जी हाँ, एक्चुअली वो अच्छी एक्ट्रेस हैं और वो खूबसूरत मूवीज तो करती हैं, अपनी खूबसूरत सी स्माइल से लोगों का दिन तो ब्राइट करती ही हैं. लेकिन अब वो बहुत ही अच्छे से फैशन के मामले में भी लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. सो अगेन, सोनम कपूर जी, हम यही कहेंगे कि फिर से एंट्री मारी है. आई मीन बॉलीवुड के लोग और खासकर आपके फैंस आपका

इंतजार कर रहे हैं, आपके स्माइल का इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज वी लव दैट वाइब्रेंट स्माइल। और हम यही कहेंगे कि ये साल आपकी वो स्माइल ऐसी ही बनी रहे, हेल्दी रहें आप, वेल्दी रहें, और तरक्की तो आप कर ही रही हैं, मतलब आप लिटरली बहुत ही अच्छे से वेल्थ अक्यूमुलेट कर रही हैं, वो आगे भी करती रही, ये साल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहे, यही हमारी है दुआ। और यहाँ पर अब जरा गाना प्ले कर लिया जाए इनमें से एक अभिनेत्री का, क्योंकि ऑफकोर्स बर्थडे विश बिना उनके गानों के कैसे कंप्लीट हो सकती है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की। जी हाँ, भारत की खबरों से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर क्या कहा, आइए जरा जानते हैं। भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को लेकर बयान दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि अपने ही देश के भीतर सक्रिय समूहों को फितना अल हिंदुस्तान कहने का पाकिस्तान का फैसला आधिकारिक तौर पर प्रायोजित दुष्प्रचार है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय सभी आतंकवादी समूहों और संगठनों को आधिकारिक तौर पर फितना अल हिंदुस्तान घोषित किया था। पाकिस्तान ने बिना कोई सबूत दिए आरोप लगाया था कि ये संगठन भारत के इशारे पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय राजदूत ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य हवाई हमलों की भी कड़ी निंदा की। भारत का कहना है कि इन हमलों से बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हो रहे हैं और अफगान जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पार्वतनेनी ने कहा कि मैं फिर दोहराना चाहता हूं, किसी नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम दे देने से जिम्मेदार पक्ष दोष मुक्त नहीं हो जाता। नागरिकों की हत्या करना, उन्हें घायल करना और बच्चों को अनाथ बनाना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। भारतीय राजदूत ने कहा कि अपनी नाकामियों के लिए पड़ोसी देशों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दुनिया को गुमराह करने की ये कोशिश नाकाम जल्द ही होगी।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है, अब जरा बात करते हैं शी जिनपिंग की, क्योंकि 2019 के बाद वो पहली बार पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, दो दिवसीय अपनी इस यात्रा में क्या क्या हुआ आइए जरा बताते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के दो दिन के दौरे पर है। 2019 के बाद ये उनका उत्तर कोरिया का पहला आधिकारिक दौरा है। सोमवार सुबह राजधानी प्योंगयांग पहुंचने पर उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में शी और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके बीच शिखर बैठक हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक शी जिनपिंग ने सोमवार रात एक डिनर कार्यक्रम में कहा कि चीन और उत्तर कोरिया पहाड़ों और नदियों से जुड़े हुए हैं और उनकी तकदीर एक है। शी ने यह भी कहा कि उन्होंने किम के साथ समय के रुझान को समझने और उच्च स्तर के सहयोग के साथ लोगों के बीच रिश्तों और मजबूत करने पर महत्वपूर्ण सहमति बनाई है। चोर चोर मुसेरा भाई, बात तो सही है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
7: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
6: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
7: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ H-1B वीजा के लिए $1,00,000 की फीस को कोर्ट ने अवैध करार दिया है। जी हाँ, अमेरिका के एक फेडरल जज ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया, जिसके तहत हाई स्किल्ड विदेशी कर्मचारियों के लिए नए H-1B वीजा पर $1,00,000 की फीस लगाई गई थी। बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी CBS न्यूज के मुताबिक अमेरिकी जिला जज लियो सोरकिन ने अपना फैसला 20 राज्यों के पक्ष में सुनाया। इन राज्यों ने सितंबर में ट्रंप की ओर से घोषित नई फीस को चुनौती दी थी। जज का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस की अनुमति के बिना H-1B आवेदन पर $1,00,000 का टैक्स लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से नियुक्त किए गए जज ने 42 पन्नों के अपने फैसले में लिखा कि ऐसी कोई वैधानिक शक्ति मौजूद नहीं है जो कि ट्रंप प्रशासन को H-1B आवेदन पर $1,00,000 का टैक्स लागू करने की अनुमति देती हो। वहीं अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एक बयान में सोरोकिन के फैसले को ब्लेटेंट जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि राजनीतिक विचारों पर आधारित फैसला बताया और ट्रंप प्रशासन के आव्रजन सुधारों का बचाव किया। वही एग्जैक्टली H1B वीजा क्या है, इफ यू डोंट नो अबाउट इट लेट मी एक्सप्लेन. जी हाँ, सो H1B वीजा जो है वो कांग्रेस ने 1990 में शुरू किया था. इसके तहत अमेरिका स्थित कंपनियों को विशेष पेशेवर क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से अधिकतम 6 साल तक नियुक्त करने की अनुमति मिलती थी. मतलब कंपनियां जो है वो डायरेक्ट लोगों को उठा सकती थी फ्रॉम दूसरी कंट्रीज. जी हाँ, कांग्रेस ने हर साल जारी किए जाने वाले H1B वीजा की संख्या 65,000 तय की है. इसके अलावा एडवांस्ड डिग्री रखने वाले लोगों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा जारी किए जा सकते हैं. इस वीजा कार्यक्रम के तहत नियुक्ताओं यानी कि कंपनियों को कुछ निर्धारित फीस भी देनी होती है जो आमतौर पर $1,700 या $4,500 के बीच में होती है. लेकिन पिछले साल ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, एक बिल पर साइन कर दिया जिसमें सभी नए H1B जो एप्लीकेशन थे उनमें $100,000 की फीस जोड़ी गई. जी हाँ, $100,000 की फीस जो है वो जोड़ी गई. US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में मंजूर किए गए कुल H1B वीजा में 71% लाभार्थी भारत से थे, जबकि चीन 11.7% के साथ दूसरे पद पर था. जी हाँ, अब H1B वीजा पर क्या ये आगे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कह तो गया है लेकिन जजेस कुछ कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं. वी डोंट नो अगर वो सच में मानने वाले हैं ये बात या नहीं, पर लेट्स सी. यहाँ पर एक और गाना हम सब के, आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। पहले भी हमने की, बट अब जरा थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके मूड स्विंग्स जो हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उनके मूड स्विंग्स प्रेग्नेंट औरतों से कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। जी हाँ, अब इसे मूड स्विंग्स नहीं, स्टूड स्टिंग बोलना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर अब जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। जी हाँ, मतलब मूड स्विंग्स क्यों मैं कह रही हूँ, आइए जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि मैं नितिन्याहू को जो भी करने के लिए कहता हूँ ना, उसे वो कर देते हैं। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी से एक संक्षिप्त बातचीत में कहा कि अगर वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो उसे कर देते हैं। जी हाँ, सो ट्रंप ने बीबीसी की नॉर्थ अमेरिका संपादक सारा स्मिथ से सोमवार पर को बात की, और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान पर हमला रोकने के लिए कैसे राजी किया। ट्रंप ने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमें समझदारी से काम लेना होगा, हम एक बेहद मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर करने के बहुत करीब हैं, एक बहुत अच्छे समझौते पर। उन्होंने कहा, ना परमाणु हथियार होंगे ना कुछ और, आप जानते हैं हमें बहुत ज्यादा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि उनकी ओर से इसराइल से ईरान के हमलों के जवाब में मिसाइलें ना दागने के आग्रह पर के बावजूद नितिन्याहू ने जवाबी हमला किया, इस पर ट्रंप ने कहा, नहीं नहीं, वे पहले ही जा चुके थे, वे पहले ही रास्ते में थे, उसके बाद उन्होंने नहीं किया। जो पहले ही रास्ते में थे रॉकेट्स, वो चले गए, उससे बाद जो है, जब मैंने बोला तो उसके बाद नहीं किया। अच्छा चलो, पहले उन्होंने ये बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बहुत जल्द ईरान के सामने आप अकेले पड़ सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि अभी तो साइड ले रहे थे, अब क्या हो गया, आइए जरा वो भी बताते हैं। सो ट्रंप ने ये बात इजराइल के चैनल 12 को दिए एक इंटरव्यू में कही। बीबीसी से कुछ और कहा, यहाँ पर कुछ और कहा। यहाँ पर वो कहते हैं, इजरायली न्यूज एजेंसी ने सोमवार को बताया कि नितिन्याहू ने रविवार को ईरान पर हमला करने के अपने अंतिम फैसले के बारे में ट्रंप को योजना के अंतिम स्टेज तक जानकारी नहीं दी थी। जी हाँ, रविवार को ट्रंप ने नितिन्याहू से कहा था कि वे ईरान पर जवाबी हमला करने से बचे। दरअसल इसराइल की ओर से लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किए जाने के बाद ईरान ने इसराइल पर हमले किए। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बातचीत किसी सहमति के बिना समाप्त हुई और नितिन्याहू ने इस मामले में अपने अंतिम फैसले की जानकारी ट्रंप को नहीं दी। अब जो इंसान कहता है कि ट्रंप जो कहते हैं वो नितिन्याहू करते हैं, ये तो मैं कभी मान ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रंप को तो चलाते ही नितिन्याहू है, इसराइल अमेरिका को चलाता है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है। क्योंकि ट्रंप का इतना सारा कंटेंट इसराइल के पास पड़ा है, मतलब मोसाद ने जो इकट्ठा किया है इतने सालों से, अगर वो सच में उसे एकदम खतरनाक तरीके से होर्डिंग्स पे लगाने पे आ जाए तो ट्रंप के तो परखच्चे उड़ जाएंगे। जी हाँ, अब जरा मैं आपको पीछे की बात बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि 12 जून को आईपीओ आ रहा है स्पेसएक्स का, और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों मना किया था बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप अभी हमला मत करना, बस स्पेसएक्स का आईपीओ होने दो। लेकिन ऑफकोर्स उन्होंने ये बात सामने से नहीं कही, ये तो पीछे की बात है, क्योंकि वो चाहते थे कि स्पेसएक्स का आईपीओ जो है वो अच्छे से निकल जाए और फिर जो है हम अच्छे से दोनों मिलके जो है वो इनका काम खराब करेंगे। लेकिन स्पेसएक्स का आईपीओ जो है वो अच्छे से निकलने दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जी हाँ, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू भी एकदम दो सींग के बैल की तरह है। He's like, okay, but who are you to tell me? जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने लिया और लेबनान पर हमला कर दिया। अब जब उन्होंने लेबनान पर हमला किया तो उन्होंने ये गेस नहीं किया था कि ईरान उन पर हमला करेगा, और ईरान ने वो हमला कर दिया। ईरान ने कहा, तुम मेरे दोस्त को मार रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? जी हाँ, ईरान ने पहले भी यही किया था, इसलिए तो ईरान सारे बवाल में फंसा था। जी हाँ, वही बवाल जो कि 2023 में शुरू हुआ था जब इसराइल पर ईरान ने हमला किया था, क्योंकि इसराइल फलस्तीन पर हमला कर रहा था और हमास पर हमला कर रहा था। नाउ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से मनाने की कोशिश की कि ओके ठीक है, बस स्पेसएक्स का आईपीओ होने दो, उसके बाद जो है तुमको जो करना होगा वो तुम करना, मेरे को जो करना होगा मैं करूंगा। लेकिन यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने वो भी नहीं माना। जी हाँ, अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नाक तो बचानी है, आई मीन शूर्पणखा बनके तो नहीं घूम सकते वो, राइट? सो इज लाइक, यू नो व्हाट, वो हमेशा वही करते हैं जो मैं बोलता हूँ। और जब पूछा गया कि अच्छा तो फिर रॉकेट क्यों दाग दिया ईरान पर, आपने तो मना किया था, तो वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं, वो तो पहले ही निकल गए थे, उसके बाद वाले जो है वो नहीं निकले हैं, वो पहले निकल गए थे, बाद में किए, उसके बाद कुछ नहीं निकला। अरे भैया तुम मान जाओ, तुम्हारी बात बेंजामिन नेतन्याहू नहीं मानते हैं, एंड दिस इज द सच्चाई। नाउ आई एम वेरी क्यूरियस कि आईपीओ जो होने वाला है स्पेसएक्स का, उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि उसके लिए जो माहौल बनाया गया था उससे पहले सारी मार्केट्स जो हैं वो क्रैश हो गई हैं। मतलब अमेरिका से लेके भारत से लेके पाकिस्तान से लेके एशिया की और भी इतनी सारी मार्केट्स जो हैं वो क्रैश हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने हमला कर दिया और ईरान पर भी हमला हो गया।
सो जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, पता चला कि वो माहौल जो है अब बनता बनता जो है वो रह गया। बट लेट्स सी, अभी भी टाइम है, अभी भी एटलीस्ट कुछ दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम है। लेट्स सी क्या होता है, IPO कैसा जाता है SpaceX का, या ईरान जो है उसमें भी बाजी मार जाता है। लेट्स सी, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

कल ही की बात है, मैं इंटरनेट चला रही थी और वहां पर एक रील मेरे सामने आती है और उस रील में बड़े ही अच्छे से बताया जाता है कि कैसे सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लेडीज की, औरतों की, मेन से शुरू होती हैं। जी हाँ, मतलब मर्दों से शुरू होती हैं और आप कहें मेन से शुरू होती हैं। और इसके बारे में प्रूफ जो है वो हमें दिया गया है, जस्ट दैट हम उसको अनदेखा कर देते हैं, हम उसको पहचानते ही नहीं है। आई मीन, आप खुद ही सुन लीजिए, मेंटल इलनेस। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, मेंटल इलनेस। अच्छा, ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। जी हाँ, मेंटल ब्रेकडाउन, मेनोपॉज। जी हाँ, और उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट। जी हाँ, मतलब ये सारी चीजों के लिए भी फिर आपको जाना पड़ता है गायनोकोलॉजिस्ट। जी हाँ, और अगर सच में बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाए तो फिर हिस्टेरेक्टमी। जी हाँ, हिस्टेरेक्टमी। जब मैंने ये रील देखी, आई वाज लाइक वो, मतलब मैंने ये सुना था कि कुछ चीजें जो है वो मर्दों को करनी चाहिए, जैसे कुकिंग, वर्किंग, है ना। मतलब औरतों के लिए काम करना थोड़ी है, औरतों के लिए तो सिर्फ मजे करना, रेस्ट करना, आराम करना और फन करना है। और ये कहा गया है, मतलब ये हमारे वर्ड्स में जो है इसका हिंट हमें बहुत पहले ही दे दिया गया था, पर किसी ने हमें इसको समझाया ही नहीं। लेकिन अब जो है हम अच्छे से समझ रहे हैं, क्रिएटिव लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम भी तो आप सुन लीजिए, मतलब बंदों से ही शुरू होती है। सो अगर लाइफ में बंदे जो है हम नहीं लाए तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वेल, मैं आपको सही बता रही हूँ कि जो आजकल की जो लड़कियां हैं, मैं आपको बता रही हूँ आजकल की जो लड़कियां 20-30 तक, जी हाँ, 28 से लेकर 40 साल तक, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लड़कियां जो हैं वो कुंवारी रहने वाली है। मतलब उनको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर लाइक, ओके, वी डोंट नीड मेन इन आर लाइफ, बट ऑफकोर्स अमार फादर और ब्रदर्स एंड सिबलिंग्स आर वन थिंग, बट मेन इन दैट वे इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड लड़कियां जो है वो समझ गई हैं कि ये सब मैट्रिक्स है भाई, समझाना, बुझाना और फिर हमसे काम कराना, यही सब होता आ रहा है। और अब हमको ये सब नहीं करना, वी कैन अर्न फॉर आर सेल्फ एंड वी कैन लिटरली डू एनीथिंग, वी कैन लिटरली गिव बर्थ, आई मतलब सब कुछ हम कर ही लेते हैं, तो फिर व्हाई डू वी नीड मैन। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, आई मीन जो तुमने सेकंड वाला पॉइंट बोला वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है थोड़ा, बट अगर आप साइंटिफिकली देखो तो दैट इज इवन पॉसिबल विदाउट मैन। आई मीन सो या, यहाँ पर जिंदगी जो है वो मर्दों के बिना बिताई जा सकती है, ये आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो। नाउ आई एम नॉट गोना से कि ये बात बनती है या नहीं बनती है, वैसे कहा जा रहा है, इट्स अ नैरेटिव इन ऑन सोशल मीडिया। यू टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और क्या आपको भी लगता है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बंदों से शुरू होती है, लाइक मेंटल इलनेस, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, मेंटल ब्रेकडाउन, मेनोपॉज एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड देन अगेन हिस्टेरेक्टमी, सब कुछ तो बंदों से शुरू हो रहा है। सो यू टेल मी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट, यू टेल मी, डू यू एग्री विद इट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: me? May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au

0: कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मवाणी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाने का, मतलब बात हो रही है ओल्ड इज गोल्ड की, और मतलब अब होने वाले हैं गाने पुराने, और वो पुराने गानों के साथ होंगे खूबसूरत फसाने। जी हाँ, बात करेंगे पुराने किस्सों की और कहानियों की। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपके पास कोई फरमाइश है जो कि पुराने गानों से रिलेटेड है, जल्दी से आ जाइए उसे लेके, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम। एंड यहाँ पर हम आपके लिए जो पहला गाना प्ले करने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत है इस सेगमेंट का। उसका नाम है दिल तेरा दीवाना है सनम। जी हाँ, रफी साहब और लता जी का गाया हुआ ये गाना, इट्स अ लेजेंडरी सॉन्ग। सो ऑफकोर्स इससे बढ़िया शुरुआत और क्या हो सकती है इस खूबसूरत से सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड की। तो आइए सुनाते हैं आपको इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी दोस्तों, शायद मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि कैसे जब भी शमी कपूर के गानों की रिकॉर्डिंग रफी साहब करते थे तो शमी कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के एकदम सामने बैठ जाते थे, तो रफी साहब अपनी रिकॉर्डिंग को करते हुए देखते थे कि शमी कपूर साहब लिप सिंक करते हुए, जो कि वहीं पर हो रहा होता था, उसको करते हुए कब अपनी गर्दन झटकते थे, कब अपनी बॉडी को मूव करते थे, तो उसी ही हिसाब से रफी साहब उनके गाने गाते थे। आपने ये गाना सुना कितना खूबसूरत है, पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कभी ऐसे जा रहा है गाना, कभी ऐसे जा रहा है, मतलब इतनी लहलहाहट है इस गाने में कि मैं क्या ही कहूं। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि इनकी म्यूजिक की सेंस की तारीफ तो और भी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां करती रही हैं। जी हाँ, तो शमी कपूर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस सभी का ही बड़ा अजीबोगरीब रहा है। किसी का बहुत ही मजेदार रहा है, किसी का बहुत ही ज्यादा टफ रहा है। अगर हम बात करें शर्मिला टैगोर जी की, तो वो कहती थी कि अरे मेरा तो बहुत सर दर्द हो जाता था क्योंकि हम प्रैक्टिस कुछ और करते थे और शमी कपूर साहब टेक में कुछ और ही कर देते थे। लेकिन यहाँ पर आशा पारिक जी कहती हैं कि मेरी आंखों में आज भी वो सीन्स आ जाते हैं क्योंकि शमी कपूर साहब की जो सेंस थी म्यूजिक की वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। मतलब जब हमें गाना करना होता था तो हम एक दूसरे के साथ बात करके ही अपने स्टेप्स बना लिया करते थे। शमी कपूर साहब मुझे बोल दिया करते थे मैं ये करने वाला हूं तो तुम ये कर लेना, और मैं उन्हें बोलती थी ठीक है मैं ये करने वाली हूं तो आप ये कर लीजिएगा। आशा पारिक जी कहती हैं किसी और के साथ शूटिंग करते वक्त, किसी और के साथ फिल्म करते वक्त वहां डांस मास्टर होते थे, गाना करते वक्त वो डांस मास्टर जो है वो गाना सिखाते थे, बट शमी कपूर साहब के साथ डांस मास्टर की जरूरत ही नहीं होती थी। मतलब अगर आप शमी कपूर साहब के साथ डांस करने वाले हो, गाना करने वाले हो, तो शमी कपूर साहब ही आपको गाने के सारे स्टेप सिखा देंगे क्योंकि उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी ज्यादा थी। मतलब वो इतने वर्सेटाइल थे और इतने स्पॉन्टेनियस थे कि उसके बारे में बहुत सारी एक्ट्रेसेस बताया है। जी हाँ, वो बताती हैं कि मतलब वो हमें बोलते थे कि ठीक है तुम ये कर लेना मैं वो कर लूंगा, और ऐसे ही हम डांस जो है वो कर दिया करते थे, गाना जो है वो मजे मजे से हो जाता था, हमें डांस मास्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। सो ये थे शमी कपूर साहब आपके लिए। मतलब अगर ये कहा जाए कि ही वॉज नो लेस देन अ गिफ्ट फॉर इंडियन सिनेमा, इट इज वेरी वेरी ट्रू। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी अदायगी की बात होती है और खुद के यूनिक अंदाज की बात होती है तो देवानंद साहब और शमी कपूर साहब, इनको कोई भी बीट नहीं कर सकता। शायद सुपरस्टार्स और भी हुए, लेकिन जो अदायगी, जो यूनिक अदा इन्होंने क्रिएट की, इन्होंने अपना एक तरीका, अपनी एक एक्टिंग का तरीका जो है वो पैदा कर दिया, क्रिएट कर दिया। आई मीन इट वाज सो ह्यूमंगस, राइट? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। Fun.

0: को।
1: जी हाँ दोस्तों, उस वक्त उस एरा में हिंदी फिल्म जगत में बहुत सारी चीजें होती थी। जी हाँ, गाने जो हैं उनके लिए चॉइसेस जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर सिंगर्स होते थे, राइट? मतलब राज कपूर को अगर अपनी फिल्म के लिए गाना चाहिए होता था तो वो मुकेश के पास जाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि मुकेश की आवाज राज कपूर साहब की आवाज से बहुत ज्यादा मैच होती थी और मुकेश की आवाज जो है वो राज कपूर की आवाज बनी। अब यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता था कि कुछ चीजें जो है वो पर्टिकुलर सिंगर्स ही किया करते थे। मतलब अगर बहुत ही अच्छा कोई खूबसूरत क्लासिकल गाना है तो उसे या तो रफी साहब बहुत अच्छे से गाते थे या तो मन्ना डे उसे बहुत अच्छे से गाते थे, लेकिन किशोरदा का यहाँ पर थोड़ा सा रोल कम हो जाता था। ऐसा कहा जाता था कि किशोरदा क्लासिकली ट्रेन्ड थे नहीं और इस वजह से वो बहुत ही अच्छे से नहीं गा पाते थे क्लासिकल सॉन्ग्स को, जो कि बहुत ही क्लासिक टोन में होते थे। तो ऐसा ही किस्सा है एक ऐसे गाने का जो कि लिटरली बहुत ज्यादा हिट हुआ। इसे गाया तो किशोरदा ने है, लेकिन इसकी कहानी जो है, इसके पीछे की कहानी जो है वो बहुत ही दिलचस्प है और मैं आपको सुनाने वाली हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा। सो होता कुछ ऐसे है कि मूवी महबूबा में, जो कि 1976 में आई थी, उसके लिए एक गाना गाना था, मेरे नैना सावन भातो। अगर आपने ये गाना सुना होगा तो शायद आपको पता होगा कि ये बहुत ही क्लासिकल टोन में है और इसके लिए अगर आपने गाना नहीं सीखा है बचपन से तो आप इसको कहीं ना कहीं नहीं परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से। एंड किशोरदा हमेशा एक ही जगह कमजोर पड़ जाते थे कि उन्होंने क्लासिकली ट्रेनिंग नहीं ली थी बचपन से, बट उनके पास टैलेंट की कमी नहीं थी। अब आरडी बर्मन साहब इसका म्यूजिक डायरेक्ट कर रहे थे इस मूवी की, और साथ में जो डायरेक्टर थे वो थे शक्ति सामंत। जी हाँ, अब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि किशोरदा को बुलाया जाता है इस गाने के लिए और किशोरदा जाते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और वो इतना बुरा गाते हैं इसको, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा उस वक्त के जो लोग जिन्होंने इस सीन को देखा था उनका कहना था, पर मुझे नहीं लगता कि किशोरदा कुछ भी गलत गा सकते थे या बुरा गा सकते थे, सो आई वुड से दैट। बट यहाँ पर जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका कहना था कि किशोरदा ने बहुत ही बुरे तरीके से उस गाने को गाया। फिर क्या हुआ? वेल दैट आई एम गोना टेल यू, पर पहले मैं आपको एक और खूबसूरत सा गाना, मतलब ऑफकोर्स यही गाना मैं आपको सुनाऊंगी, मेरे नैना सावन भादो। अब आप इस गाने को सुनिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि अच्छा, मतलब फिर एंड में अगर किशोरदा ने ही इस गाने को गाया तो इतनी खूबसूरती से गाया वो कैसे बुरा गा सकते हैं। चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये गाना खुद ही सुन लीजिए।

जी हाँ दोस्तों, तो गाना आपने सुन लिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपको किशोर दा की गायकी कैसी लगी। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा इससे ज्यादा खूबसूरत इसे कौन गा सकता है। वेल, यही हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे, आइए जरा आपको बताते हैं। फिर से कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जैसे मैंने आपको बताया कि किशोर दा जाते हैं स्टूडियो में और वो इस गाने को बहुत ही बुरे तरीके से गाते हैं, ये कहना है उधर मौजूद लोगों का। जी हाँ, और इस किस्से के बारे में अनु कपूर ने एक कार्यक्रम में बताया था। अब अनु कपूर कहते हैं कि किशोर दा ने जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इसे गाया तो इतना खराब गाया कि वहां पे जो डायरेक्टर थे, यानी कि जो इस मूवी के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत, उन्होंने पंचम दा यानी कि आरडी बर्मन जो कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे इस मूवी के, उनको कह दिया कि पंचम ऐसा करो तुम बस इसे खत्म करो और रफी साहब से डेट ले लेना और खुद ही कर लेना। उन्होंने ये कह दिया, मतलब किशोर दा ने गाना गाया और उन्हें गाना पसंद नहीं आया तो उन्होंने सीधा किशोर दा से बात भी नहीं की, उन्होंने पंचम दा से बात की, आरडी बर्मन से जो कि म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि पंचम ऐसा करना, रफी साहब से डेट्स ले लेना और खुद ही इसे कंप्लीट कर लेना। मतलब उन्होंने मान लिया था कि किशोर दा तो नहीं कर पाएंगे, अब रफी साहब ही हैं जो इसे बचा सकते हैं और इस गाने के साथ जस्टिस कर सकते हैं, बिकॉज रफी साहब क्लासिकल गानों में महारत हासिल किए हुए थे। बस फिर क्या था, शक्ति सामंत वहां से निकल जाते हैं ये बोल के, और फिर अंदर से आवाज आती है, किशोर दा बंगाली में पूछते हैं पंचम दा से कि क्या शक्ति दा चले गए, तो फिर सामने से पंचम दा कहते हैं कि हाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करो रिकॉर्डिंग शुरू करो और टेक शुरू करो। तो पंचम दा फटाफट टेक शुरू करते हैं और फिर जो किशोर दा गाते हैं वो यही गाते हैं, मतलब पहले टेक में वो इस गाने को डन कर देते हैं। मतलब ये सुनना कि ओके उन्होंने अच्छा गाना नहीं गाया और उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, किशोर दा के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्लासिकल गाना भी है तो क्या, मैंने नहीं सीखा है तो भी क्या, मैं इसके साथ जस्टिस करूंगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जस्टिस करूंगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्टर के जाने का इंतजार किया और फिर पूछा कि वो चले गए तो आइए फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करो। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और पहले ही टेक में ये खूबसूरत सा गाना डन हो गया और किशोर दा ने प्रूव कर दिया कि देर इज नथिंग, लिटरली नथिंग, जो कि वो नहीं गा सकते हैं इस दुनिया में। जी हाँ, ये खूबसूरत सा गाना उसकी सबसे बड़ी पहचान है, एग्जाम्पल है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाऊंगी और फिर आपसे विदा लेंगे, लेकिन पहले एक बड़ा ही प्यारा सा गाना जो कि आप सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जाने का वक्त हो गया है, जा रहे हैं हम आज के लिए, लेकिन डोंट वरी, कल वापस आएंगे, एंटरटेन करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और डांस भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लेकिन आज के लिए जाना होगा क्योंकि अभी आपको है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने, और वो है रिलैक्स, रिलैक्स करना, रिजुविनेट करना, वेडनेसडे के लिए रेडी होना। सो अभी सुकून से इस शाम का मजा लीजिए, बारिश का मजा लीजिए अगर आपके हो रही है तो, एंड दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स। तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: प्रिया, next month मामा का birthday है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
10: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
9: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

का सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं नीव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन फेस्टिवल 2026 के प्रोग्राम का ऐलान, थीम है स्विच ऑन लाइट ऐप। ब्रिस्बेन के नए आर्टिस्टिक डायरेक्टर एबोनी बॉट ने आज ब्रिस्बेन फेस्टिवल 2026 के शानदार प्रोग्राम्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार की थीम स्विच ऑन लाइट अप कम अलाइव रखी गई है। ये फेस्टिवल 4 से 26 सितंबर तक चलेगा। वहीं जोहान बोथा ने क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन हीट के कोच पद से अचानक दिया इस्तीफा। क्रिकेट जगत के से ब्रिस्बेन के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान जोहान बोथा ने क्वींसलैंड और बिग बैश लीग की टीम ब्रिस्बेन हीट के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ब्रिस्बेन फेस्टिवल में होगा AFLW के जन्म पर आधारित नाटक का वर्ल्ड प्रीमियर। इस साल होने वाले ब्रिस्बेन फेस्टिवल में महिलाओं की ऑस्ट्रेलियन रग्बी लीग यानी कि AFLW के बनने की अनकही कहानी को नाटक के रूप में दिखाया जाएगा। वहीं साउथ वेंग कल्चर फोर कोर्ट बनेगा फेस्टिवल विलेज 2032 ओलंपिक्स की झलक। ब्रिस्बेन फेस्टिवल का मुख्य केंद्र इस बार साउथ बैंक का कल्चरल फोरकोर्ट होगा, जिससे एक फेस्टिवल विलेज का रूप दिया जा रहा है। इसे 2032 में होने वाले ब्रिस्बेन ओलंपिक्स के एथलीट विलेज की तर्ज पर डिजाइन किया जा रहा है। वहीं जॉइंट सिंग अलोंग इंस्टॉलेशन बनेगा ब्रिस्बेन फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण। मॉन्ट्रियल के एक मशहूर स्टूडियो द्वारा तैयार किया गया जॉइंट सिंग अलोंग साउंड सिस्टम इस बार ब्रिस्बेन फेस्टिवल में लगाया जा रहा है। इसी के साथ NRL ब्रिस्बेन ब्रोंकोस टीम में बड़ा उलटफेर, एज्रा मैम को लेकर चौंकाने वाला फैसला। नेशनल रग्बी NRL के राउंड 15 के मैचों के लिए ब्रिस्बेन ब्रोंकोस ने अपनी टीम लिस्ट जारी कर दी है। टीम मैनेजमेंट ने स्टार खिलाड़ी एज्रा मैम के रोल को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला फैसला किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले ओमान के पास भारतीय जहाज में आग, सभी 24 नाविक सुरक्षित। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास MT मेरीवेक्स नाम के एक कमर्शियल जहाज में कल दोपहर अचानक आग लग गई। ओमान में मौजूद भारतीय एम्बेसी ने आज सुबह ही कंफर्म किया है कि जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसी के साथ अमित शाह आज दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च करेंगे। इस नए डिजिटल सिस्टम से भारत के बॉर्डर पर होने वाले व्यापार और पैसेंजर्स की चेकिंग का काम बहुत आसान और डिजिटल हो जाएगा। वहीं दुबई सड़क हादसे में भारतीय कामगारों की मौत। जी हां, दुबई से आज सुबह एक बेहद दुखद खबर आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में कई भारतीय वर्कर्स की जान चली गई। दुबई में भारतीय कॉन्सुलेट लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। इसी के साथ अमेरिका में H-1B वीजा फीस को लेकर भारतीय प्रोफेशनल को बड़ी राहत। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर $1,00,000 करने की बात कही गई थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस में बगावत की खबरें तेज, 20 सांसद दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल दिल्ली तक पहुंच गई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC के करीब 20 लोकसभा सांसदों के बगावत करने की खबरें आ गई हैं। वहीं देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए आज से PMSMA कैंपेन की शुरुआत। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आज सुबह एक अमेरिकी सेना का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट्स बिल्कुल ठीक हैं और सुरक्षित हैं। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच 2-3 दिन में हो सकती है बड़ी न्यूक्लियर डील। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले 2-3 दिनों में एक बेहद मजबूत और ऐतिहासिक डील साइन हो सकती है। वहीं ईरान अपने कोस्टल एरिया में बनाएगा 5 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। एक तरफ समझौते की बात चल रही है तो दूसरी तरफ ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि वे देश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए अपनी समुद्री सीमाओं के पास 5 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएगा। वहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान सस्पेंड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्य वकील करीम खान को उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं फिलीपींस में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 37 हुई। दक्षिण फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद आज सुबह तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 37 हो गया है। रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। वहीं अब चलते हैं सीधा स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ यानी कि खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास। अफगानिस्तान को पारी और 300 रनों से हराया। भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यू चंडीगढ़ में के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में खेले गए इकलौते टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से विशाल अंतर से हरा दिया है। वहीं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप वार्म अप भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रनों से दी मात। इसी के साथ फ्रेंच ओपन अलेक्जेंडर ज्वेरेव बने नए चैंपियन। जीता अपना पहला ग्रैंड स्लैम। टेनिस की दुनिया से बड़ी खबर है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रोलैंड गैरोस पर इतिहास रचते हुए अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। वहीं सैफ विमेंस चैंपियनशिप बांग्लादेश को हराकर भारत 6ठी बार बना चैंपियन। वहीं मंगोलिया रेसलिंग भारत के सागर जागलान और काजल ढोचक ने जीते गोल्ड मेडल्स। इसी के साथ सेरेना विलियम्स की टेनिस कोर्ट पर वापसी। आज से खेलेंगी क्वींस डबल। टेनिस फैंस के लिए एक बड़ी एक्साइटिंग खबर। महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स आज कोर्ट पर वापसी करने जा रही हैं। वो आज होने वाले क्वींस क्लब डबल्स मुकाबले में खेलती हुई नजर आ रही। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: है क्रेडी ब्रिस्बेन। आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आज

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान हो।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
0: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
0: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
0: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006644355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

सत श्रीकाल जी, मैं हां संदेश अलख शर्मा, तुसी सुन रहे हो रेडियो बसवानी 101.1 एम ते जुड़ा हो चुके हैं। हुण तक ते हम खबरां दा, तां फिर चलो करते हैं शुरुआत। रुका दे भारत दीवाल जिथे नीट यूजी दे परीक्षा लीक विवाद मगरों यह मुद्दा पूरे देश विच चर्चा का विषय बनिया हुआ है। इस मामले विचाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सिक्ख्या मंत्रालय ने एक बहुत सख्त कदम चुकया। नीट प्रीख्या की सुरक्षा ते लीक होने तो रोकण लई पेपर तैयार करन वाले माहिरां नूं प्रीख्या खत्म होने तक पूरी तरह निगरानी हेठ भाव लॉकडाउन विच रखा जाएगा। प्रीख्या की प्राइवेसी नूं यकीनी बनाउण लई पेपर सैट करन वाले प्रोफेसरां ते माहिरां नूं एक सुरक्षित ते गुप्त स्थान रखा जाएगा। जद तक नीट की मुड़ प्रीख्या सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो जाती उदो तक इस सारे मैंबर बारी दुनिया तो पूरी तरह कट रहे। यह प्रीख्या 21 जून न करवाई जा रही है। इस लॉकडाउन दौरान पेपर सैट करने वाले किसी भी व्यक्ति मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट या अजे किसी भी होर साधन की वरतों करने की इजाजत नहीं होगी। उधर मिडल ईस्ट विच काफी दिनों तो चलदी आ रही शांति अज भंग हो गई है। ईरान ते इजराइल विचालों कीते गए ताजा हमलों मगरों जंग दे मुड़ शुरू होने का खतरा पैदा हो गया, जिस कारण पूरी दुनिया विच मुड़ दहशत फैल गई है। इसे खतरे के मद्देनजर तेहरान स्थित भारतीय एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकां नूं ईरान की यात्रा न करने की अपील की है। इस तों इलावा जो भारतीय नागरिक पहलां तों ईरान विच हन ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਈਰਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਬੈਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਈਰਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तो एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने पाकिस्तानी फौज दा हैवान वाला रूप उजागर कर दिता है। इथे चल रहे प्रदर्शनों कारण हालात बेहद तनावपूर्ण और हिंसक बने हुए ने। जानकारी मुताबिक पीओके के रावल कोट विखे एक जनाजे विच शामिल होने लई वड्डी गिनती विच लोग इकट्ठे हुए सन, जिन्हां ते पाकिस्तानी फौज ने अन्नेवा गोलियां चला दित्तियां, जिस कारण घट्टो घट 27 लोग मारे गए। दस्सिया जा रहा है कि शुक्रवार नूं शाजेब हसी हबीब नां दा एक प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी फौज हथों मारिया गया सी। ए लोक उसे दे जनाजे लई इकट्ठे होए सन। फिलीपींस विच आए 7.8 तीव्रता वाले भूचाल ने बहुत तबाही मचाई। इस दौरान दक्षणी फिलीपींस दे एक सूबे विच घट्टो घट 17 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर मौतां 7.8 तीव्रता वाले भूचाल कारण जमीन खिसकण कारण हुई हन। इस विचाले भूचाल कारण हुई कुल मौतां की गिनती 32 हो गई है। सारंगानी सूबे के आफत निवारण अधिकारी ने दस्सिया है कि पहाड़ी शहर गलान विच भूचाल कारण जमीन खिसकण कारण घरां नूं नुकसान पहुंचा, जिस कारण 13 पिंड वासी मारे गए। उन्होंने कहा है कि सारंगानी विच 4 लोगों के मारे जाने का कारण अजे भी स्पष्ट है। उधर अमरीका ते इंग्लैंड वर्गे देशों मगरों हुण न्यूजीलैंड तो भी भारतीय भाईचारे खिलाफ प्रदर्शनों दीआं खबरां सामने आउण लगियां हन। बीते दिनी ऑकलैंड के कई इलाकियां विच कंधां ते किल ऑल इंडियन वर्गे भारत विरोधी नारे देखण नूं मिले, जिस मगरों उत्थे रहिंदे भारतीय भाईचारे दे लोकां विच डर दा माहौल देखिया जा रहा है। हालांकि इस मामले विच किसी भी भारतीय नागरिक नूं उत्थे किसी भी तरह के विरोध का सामना फिलहाल नहीं करना पिया, पर उत्थों दे मायरू भाईचारे दे लोकां वल्लों दो वार नगर कीर्तन नूं रोकण दी कोशिश ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। उधर फिलीपींस के दक्षणी टापू मिंडानाओ विच आए शक्तिशाली भूचाल तो बाद तुरंत बाद कई एशियाई देशों विच सुनामी दीआं चेतावनियां जारी कीतियां गईआं ने। सोमवार सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूचाल ने देश विच भारी तबाही मचाई हुई है, जिस विच हुण तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट आफ वोलकैनोलॉजी एंड सिसमोलॉजी मुताबिक शुरूआती भूचाल तो बाद एक घंटे तो वध समय तक झटके महसूस हुंदे रहे। फिलीपीन दे राष्ट्रपति ने कहा है कि एमरजेंसी एजेंसियां नूं सरगर्म कर दिता गया है, जिस विच ऑफिस ऑफ सिविल डिफेंस अते नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कौंसल शामिल है। देश के अधिकारियों ने कहा है कि सारंगानी दवाओ ऑक्सीडेंटल तावितावी अते सुलु सने 9 सूबियां नूं तुरंत लोकां नूं तुरंत उच्चे स्थानां ते जाण लई कहा गया है। उत्थे ही इंडोनेशिया विच भी उत्तरी
ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਉੱਤਰੀ ਗੋਰਟਾਲੋ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਾਂਗੀਹੇ ਸਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ bisoni@bisoni.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸੋਨੀ ਵੰਸਨ ਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਕਲੇ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव Under the Stars, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज
4: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

आदाब जी, सत श्री अकाल जी। तुसीं बने होए हो जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 FM ते जी आरचे संदेश शौलक दे नाल तुसीं बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहणा चवला शुरू हो चुका है जी। तेरां गल्लां नूं सरगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का, तुसीं की गाणा है, तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101 FM साडा फेसबुक पेज है जी, ते bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसीं उह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुणे वापस आउंदी आ, जाणा कितें वी नहीं, क्योंकि गल्लां बातां दा सिलसिला साडा इसे तरह दे नाल जारी रहूगा। तुसीं जुड़दे रहो ते गाईते सुणदे रहो गीत, ते नवें पुराने हर तरह दे पंजाबी गीत सुने ही भेजो अपने।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसवान इवन सर ओवान एम ते जी आरचे संदेश अलग दिन से बने हुए हूँ। गल करते हैं सब तो पहला केड़ी फिल्म का नाम आता है सुनील शेट्टी की। जो जो सुनील शेट्टी का जिक्र होगा ना उदो 90s एक फिल्म का जरूर नाम आऊगा। जी जी जी, 90s की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों की गल आती हैगी है तो नाम मोहरा का ही होंगे ना, सुनील शेट्टी की है। सुनील शेट्टी ने विशाल का रोल किया जो इंसाफ पाउण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह फिल्म 1994 की दूसरी सब तो वड्डी हिट सी। इसकी कमाई ने ट्रेड पंडिता भी हैरान कर दिया। फिल्म के गाने से सुनील अक्षय की जोड़ी ने अजिहा जादू किया कि मेकर्स के लिए पैसे छापण वाली मशीन साबित हुई सी।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolar.com।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो दुस्वानी वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। बॉर्डर टू जो रिलीज हुई सी ना तो नो डाउट बहुत सोहनी है बॉर्डर टू, पर बॉर्डर वन का जिक्र हुंदा रहा सी क्योंकि बॉर्डर वन ना ओदा दा कोई जवाब ही नहीं। जेबी दत्ता दी इस फिल्म ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस से धूम मचाई बल्कि इंडियन सिनेमा दी सब तो वड्डी कल्ट देशभक्ति फिल्मा दे विचों एक बन गई। सूबेदार भैरव सिंह दा सुनील शेट्टी दा रोल अज भी अखां विच हंझू लिया दिंदा है। बॉर्डर उस साल दी सब तो ज्यादा कमाई करन वाली फिल्म बनी सी उस साल यानी कि 90s दी गल करिए तां 1997 दे विच आई सी ये फिल्म जिसने थिएटर थिएटर नू ना महीने तक हाउसफुल बना दिता सी। हाउसफुल दे साइन दिखण लग गए सी थिएटर्स दे विच बहुत सारे महीने तक। इस फिल्म ने मेकर्स नू जिंदगी भर दी कमाई करा दिती सी।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.9 ते जीआर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। कुछ को गाने अजे हुंदे है गिने ना कि वह भी सदाबहार रह जाते हैं। तो एक गाना है गाए धड़कन धड़कन, बहुत ही सोहना गाना है गाए, बहुत ही ज़्यादा सोहना। तो गल भी इतने फिल्म धड़कन की हो रही है, 2000 आई सी, साल 2000 ये फिल्म ना सुनील शैटी की फिल्म। सुनील शैटी सिर्फ एक्शन तक ही सीमित नहीं सी, धड़कन ने साबित कर दिता सी। उन्होंने देव दे नेगेटिव पर इमोशनल रोल दे लई फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड हासिल किया सी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा परफॉर्म किया सी, जिस नाल सुनील दी जो बहुत सारे अलग अलग किरदार कर सकते ने सुनील शेट्टी, ये साबित कर दिता सी, क्योंकि नैगेटिव रोल दे विच भी वह बहुत ही ज़्यादा फब्बे सी। नैगेटिव नहीं, ग्रे शेड कह सकते हैं। बाकी तुहानू की लगता है, तुसीं दसो।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सिखियां तो तुहानूं दसणियां मेरा फर्ज़ है। सो वेयर डू यू टेक नोट्स।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: हनी, ये तुम कहां ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसारण वंजन वाले हम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। 1994 एक फिल्म आई सी बहुत सोहनी फिल्म सी दिलवाले। इस विच सुनील शेट्टी है जेडे अक्षय के नाल अक्सर देखे गए ने नजर आए से अजय देवगन के नाल। अजय देवगन ते सुनील शेट्टी स्टार रहे फिल्म बॉक्स ऑफिस ते जबरदस्त हिट हुई सी। सुनील दा विक्रम दा रोल ते उन्होंने डायलॉग अज भी बहुत पॉपुलर ने अज भी हर जुबान ते छाए हुए ने। तुहाडा केड़ा हैगा डायलॉग थानू याद है कोई तां तुसीं मैसेज जरूर करो ते तुहानू दस दईए कि ये फिल्म उस साल दी टॉप ग्रॉसर्स दे विचों एक सीगी।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द
3: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: move.
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready, Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट.
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन क्वाइन कहंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: लगता रूम में रह गया।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

ना बदला में ना बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
2: Get ready Brisbane! आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या मेला कार्निवल.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roysingh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roysingh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roysingh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में। वेद

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेदवाणी।

नमस्कार ब्रिस्बेन, गुड मॉर्निंग क्वींसलैंड और मेरे भारत में सभी सुन रहे लिसनर्स को भी प्यार भरी नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में आपका ये मॉर्निंग शो जिसका नाम है चांदनी का सफर। और आशा करती हूं आपके ये दोस्त आपके सफर को बेहतरीन और पॉजिटिव बनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो आइए दोस्तों, आज सुबह का मंत्र जो है ग्रहण करते हैं। नया दिन नई उम्मीदें और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है और इन दिन इन उम्मीदें इन अपॉर्चुनिटीज को हम ना गवाएं, यही कोशिश होनी चाहिए और हमारा पूरा दिन हमेशा पॉजिटिव वाइब्स को ही एक्सेप्ट करे। दोस्तों तो चलिए फिर चाय या कॉफी लेकर आप सभी बैठ जाइए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो जी ऑफिस जाकर जरूर एक कप चाय या कॉफी जरूर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगले कुछ मिनट तक मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुछ लेटेस्ट न्यूज, कुछ अपडेट्स और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। तो इन एनर्जी को जरूर अट्रैक्ट कीजिए क्योंकि इस एनर्जी और इस वाइब्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि वर्क करना है, वर्कलोड भी है और इस वर्कलोड को थोड़ा सा हम कहते हैं ना, मतलब गुड वाइब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप सभी सुने इन गीतों के साथ और एंजॉय करें मेरी टॉक को ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन। सुनते रहिए और बने रहिए इस कार्यक्रम में।

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी। तो आइए फिर ब्रिस्बेन के कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने हाउसिंग को और अफोर्डेबल बनाने के लिए नए रिफॉर्म्स को अनाउंस किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसपास नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इनकरेज किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले सालों में हजारों नए घर भी बन सकते हैं। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेनी।

आइए इसके साथ बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं क्वींसलैंड के एक कपल ने मोटर न्यूरॉन डिजीज यानी कि MND रिसर्च के लिए 40 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स डोनेट किए हैं। जी हाँ, और ये ऑस्ट्रेलिया में इसे हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी प्राइवेट डोनेशंस में से एक माना जा रहा है। बहुत ही प्यारी गुड न्यूज है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ आइए एक इकोनॉमी अपडेट आपको सुनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जुलाई से कई हाउस होल्ड्स के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उसमें कमी आने की संभावना जताई जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी प्रोजेक्ट्स की वजह से पावर कॉस्ट जो है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो है ना ये गुड न्यूज। इसी के साथ दोस्तों आइए सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे फ्रेंड्स, दुनिया में ना हर रोज हजारों खबरें आती है, लेकिन आज की जो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि लोग अब भी रिसर्च, एजुकेशन और हेल्थ के लिए दिल खोलकर डोनेट कर रहे हैं। इसी से समाज जो है हमारा आगे भी बढ़ता है। चलिए इसी के साथ एक आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको $40 मिलियन मिल जाए तो सबसे पहले आप किस काम में लगाएंगे, अपने लिए, फैमिली के लिए या फिर किसी सोशल कॉज के लिए? मुझे फटाफट से मैसेज करके बताएं। जी हाँ, तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं चांदनी का सफर रेडियो ब्रिस्वानी में। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिजनेस और एजुकेशन कॉपरेशन लगातार मजबूत हो रहे हैं। जी हाँ, हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया का जो रुख कर रहे हैं और इंडियन कम्युनिटी क्वींसलैंड की ग्रोथ में बड़ा योगदान दे रही है। तो आइए जी, इसी के साथ मैं अपना योगदान देती हूँ। इस गीत के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं वो कल का सवाल जो मैंने आप सभी से इस प्रोग्राम में पूछा था। और मैंने आप सभी से पूछा था कि ऐसा कौन सा फल यानी कि ऐसा कौन सा फ्रूट है और ऐसा कौन सा कलर है जिसका आंसर सेम है। और बहुत मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने सही जवाब दिया है। सबसे पहले उनके लिए क्लैपिंग। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑरेंज। जी बिल्कुल, देखिए ऑरेंज यानी कि संतरा और ये फ्रूट नेम है और ऑरेंज कलर भी है। जी हाँ, तो हुआ ना ऑरेंज आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों अब वक्त हो चला है आप सभी को टाटा बाय बाय कहने का। जी हाँ, और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के मॉर्निंग शो से मैं यानी कि आपकी दोस्त चांदनी लेती है इजाजत। याद रखिए दोस्तों, मुस्कुराहट फ्री होती है लेकिन इसका असर अनमोल होता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रेडियो ब्रिस्बेन सुनते रहिए। हैव अ वंडरफुल वेडनेसडे ब्रिस्बेन। बाय बाय।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इसराइल ने ईरान पर किए हमले, तो ट्रंप ने नेतन्याहू को चेताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सावधान रहने के लिए कहा और ईरान के खिलाफ जवाबी हमले रोकने का दबाव भी डाला। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद ईरान ने इसराइल पर यह हमला किया। 37 लोगों की मौत और 32,000 बेघर। फिलीपींस के लोगों ने फिर देखी 50 साल पहले वाली तबाही। दक्षिण फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। बचाव दल को मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए देखा जा सकता है। इस भीषण भूकंप में कम से कम 37 लोगों की मौत हुई बताई जा रही है, जबकि 32,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। ये पिछले 50 वर्षों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट, इसराइल के हमले में मारे गए ईरान के 2 सैनिक। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक तबाही का सबब बन सकती है। इसी बीच इसराइल ने ईरान की संप्रभुता को तार तार करते हुए उसके सीने पर भीषण हवाई हमला बोल दिया। इस आक्रामक प्रहार में ईरान की वायुसेना के 2 जवान मारे गए हैं। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। विवाद पर विराम, बंगाल की दीघा के जगन्नाथ धाम से हटा धाम, ओडिशा सरकार की आपत्ति के बाद बदला नाम। बंगाल की दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर को धाम के नाम से जाने जाने को लेकर चल रहे विवाद पर आखिरकार विराम लग गया है। घोषणा की गई है कि अब दीघा के मंदिर परिसर के नाम से धाम शब्द पूरी तरह हटा दिया जाएगा। ओडिशा की सरकार के इस मामले में हस्तक्षेप के बाद ही ये फैसला लिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को भेजा बधाई पत्र, सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड बनाने पर दी बधाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक पत्र के माध्यम से इस उपलब्धि को भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता और जनता के मोदी सरकार में निरंतर विश्वास का प्रतीक बताया। गुलाम कश्मीर में पाक कर रहा बर्बरता, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। कावला कोर्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं तथा बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: बहुत बहुत स्वागत है रेडियो बिजवानी पर। मैं जतीश पूरन आपका साथ हूं, और जैसे आप जानते हैं कि अमिता अभी भी छुट्टी पर है। नेक्स्ट वीक अमिता साथ में हो जाएंगी, ठीक है। तो रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, और नंबर है 04300031701। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो रूटीन काम हम करते हैं, रास्ते का क्या हाल है। लिंकफील्ड रोड बॉल्ड हिल स्टेशनरी व्हीकल है, यहाँ वन लेन ब्लॉक्ड ईस्ट बाउंड टूवर्स ब्रेकन रिज और इनाला। जी हाँ, इनाला एवेन्यू इनाला, यहाँ पर जो हुआ था एक्सीडेंट, एक लिया हो गया है दोस्तों। तो चलिए, वैसे कुछ और खास नहीं है, थोड़ा बारिश हो रही है, संभाल कर आप चलाइए दोस्तों। तो मौसम की ओर देखते हैं, आज वेंसडे, आज के लिए कहा गया है कि 15/23 रहेगा, 60% चांस ऑफ रेन, और कल के लिए 15/23 70%, फ्राइडे को 14/23 रहेगा 80%, और सैटरडे को 15/23 60%, और देखिए संडे को 15/24 40%। तो ये रहा कुछ मौसम रेडियो बिजवानी पर, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए कुछ पहले गीत सुनेंगे, तो फिर और कुछ फिजी समाचार लेकर आएंगे। कहते हैं कि मुश्किलें रास्ते की दीवार नहीं बल्कि आपकी हिम्मत की परीक्षा होती है, ठीक है, याद रखना इस बात को। और जहां उम्मीद होती है वहां रास्ते भी मिल जाते हैं। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा कुछ सर्दी हुआ है दोस्तों, और होपफुली इट विल क्लियर सून। और कहा गया है कि मुझे पैसा शोहरत या जन्नत नहीं चाहिए, बस वो इंसान मिल जाए जिसे मैं दिल से प्यार करता हूँ, मेरे लिए वही मेरी दुनिया है। क्या बात दोस्तों, कौन सा गीत है, चलो मैं सुनाता हूँ आपको, उम्मीद है शायद आपको भी अच्छा लग जाए दोस्तों। और इसको गाया है राहत फतेह अली खान ने और प्रीतम ने दिया है म्यूजिक।

जी हाँ दोस्तों, थोड़ा शिकायत है इस गीत में कि रब मैंने आपसे क्या मांग लिया, ना जन्नत मांगा, ये सब कुछ नहीं मांगा, मैं आपसे वही मांगा कि जिसका सपना मैं देखा हूँ उससे आप मुझे मिला दे। जी हाँ, गीत का बस यही मतलब था दोस्तों, जहाँ तक मैं समझा हूँ, तो आप बताइए आप क्या समझे हो। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, चलो थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा ठंड था शायद, इसीलिए थोड़ा ठंड हो गया, और अभी तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नंबर है 04300031701, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आ सकते हैं। और फिजी न्यूज़ में, गवर्नमेंट डेट कंसर्न्स ग्रोइंग, इकोनॉमिस्ट आर वार्निंग दैट फिजी गवर्नमेंट डेट कुड रीच अराउंड 11.4 बिलियन, विद कंसर्न्स दैट द कंट्री हैज लिमिटेड फाइनेंशियल रिजर्व्स। If a major crisis or natural disaster occurs, discussions at the state of the economy dialogue focuses heavily on debt, water, infrastructure and economic reform. चलो थोड़ा करके मैं पढ़ूंगा और एक और गीत सुन लेते हैं।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
3: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

और देखिए दोस्तों, डेली 4,400 वर्कर्स एप्लीकेशन द मिनिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल एएफजी का न्यूज है. फॉर लेबर मैटर्स रिपोर्टेड दैट कंपनीज सबमिटेड अप्रोक्सीमेटली 4,000 एप्लीकेशन फॉर फॉरन वर्कर्स ड्यूरिंग मार्च में, हाईलाइटिंग ऑन गोइंग लेबर शॉर्टेजेस इन सेवरल सेक्टर. फिजी में लेबर शॉर्टेज होने लगा है दोस्तों, क्या बात, सब छोड़ छोड़ कर तो चले गए हैं. खैर, मैं भी छोड़कर आ गया. चलिए आगे बढ़ते हुए, और अगला जो गीत है अभिजीत, अभिजीत का भी बड़ा यूनिक आवाज है दोस्तों. इज अ गुड सिंगर बट ही कैन गेट वेरी अब्रप्ट, और गा रहे हैं श्रेया घोषाल के साथ में.

जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा, अभिजीत और श्रेया घोषाल, इन दोनों की आवाजों में बहुत प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। और देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 बिगिंस अमिड कंट्रोवर्सी। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप इज अंडर वे, बट वीजा एंड ट्रेवल इश्यूज इन्वॉल्विंग सम कंट्रीज एंड सपोर्टर्स हैव क्रिएटेड इंटरनेशनल डिबेट। लेबर राइट्स, environmental concerns and travel restrictions are also attracting attention. Our AI continues to reshape the global economy. Technology and AI companies remain a major force in world market. Investors are pouring money into AI related businesses, and governments are increasingly discussing regulations, jobs and the future impact of artificial intelligence. Dekhe dosto, artificial intelligence hamare bhi business mein hai. Hum kuch aise machines hai jo क्या बताओ, उनका अपना ओन दिमाग है, अपना नहीं है, इसको फिट किया जाता है। लेकिन जो काम वो 15 मिनट में कर लेते हैं, तो शायद एक अगर ह्यूमन करेगा तो शायद 2-3 दिन लगेगा दोस्तों। दैट्स हाउ गुड दिस थिंग्स आर। तो इंसान क्या करेंगे आगे चलकर, कुछ नया फील करेंगे, शायद कुछ और टेक्नोलॉजी में शायद करेंगे काम टू डिवेलप दिस AI। जमाना पलट रहा है दोस्तों, है कि नहीं। चलिए अगला जो गीत है, इसको शेरन प्रभाकर और बप्पी लहरी इन दोनों के साथ आप सुनेंगे दोस्तों। या बप्पी लहरी का म्यूजिक होगा शायद।

तो जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी ने भी साथ दिया था इसमें। हाँ, अच्छा लगा सुनकर। उम्मीद है गाना आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा। अब जानते हैं दोस्तों, चाइना इज जनरली कंसीडर्ड टू हैव अ लो रेट ऑफ वायलेंट crimes compared with many countries. Official statistics and international data show that homicide, yani murder, rates are among the lowest in the world. The most recent widely available international figures put China's homicide rate at about 0.5 death per 100,000 people. To sochiye dosto, kya baat hai, kyun aisa hota hai? Kyunki pabandi hai bahut, aur parenting hai, good homes hai unke paas. और यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे मैं काफ़ी निकलता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ दोस्तों, मैं हर महीना निकलता हूँ सो दैट आई कैन, मेरा जो अगला गीत एक्सप्लेन करेगा क्यों मैं निकलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो दे वेरी अबंडेंट चिल्ड्रन आउट देयर, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं है दोस्तों, बहुत कम डायरेक्शन है, और आप जहाँ भी जाए देखो कहीं ग्रफिटी लिखा हुआ है, कहीं इधर वर्ल्ड में लिख देते उधर लिख देते हैं। तो दुनिया में होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत से ऐसे कंट्रीज में सर्वेलेंस जो कैमरे सभी बगल लगाए हुए हैं, वैसे इंग्लैंड में भी लगा हुआ है आफ्टर द टेररिस्ट अटैक। और हम जब बच्चे बड़े करते हैं दोस्तों, हम जब छोटे होते हैं तो हम कभी काल पनिश करते हैं, जब वे बदमाशी करते हैं, हमारा कर्तव्य, हमारा काम है उनको सिखाना, सही दिशा दिखाना, और थोड़ा सा कभी कभी डिसिप्लिन करना पड़ता है। लेकिन जो ये बच्चे हैं, मुझे लग रहा है कि सभी जगह कैमरा लगा देना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि वो फ्रीडम, हमारा फ्रीडम क्या है, ये है वो है। अरे भाई, आप यू आर ऑलरेडी इन द पब्लिक प्लेस, अब गलत काम करोगे तो फाइन भरना पड़ेगा। एक दो बार फाइन भर देंगे दोस्तों, ये वापस ये काम नहीं करेंगे। जी हाँ, आई नो दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं क्यों निकल जाया करता।

है जो प्रेजेंट यानी प्रेजेंट मोमेंट जिसमें अभी हम रह रहे हैं उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। और क्या आप जानते हैं ये जो अभी आप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं शायद हो सकता है कि आखिरी बार आप कर रहे होंगे। आई नो सुनने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन जो कुछ आप करें दोस्तों खूब अच्छी तरह से करें, एंजॉय करके करें, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो, शायद मौका ना मिले फिर।

तो दोस्तों इसी से समझ ले, उन्होंने गाया था जिंदगी दो पल की और सचमुच में वो बहुत जल्द चले गए। कैके यानी कृष्णा कुमार कुनत उनका नाम था, बॉलीवुड के एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर। और कभी बहुत फेम नहीं चाहा, ही वॉज बिट ऑफ अ प्राइवेट पर्सन। और लेकिन उनकी जो आवाज़ है जो जाकर सीधा दिल में लगती है दोस्तों, आवाज़ के कारण वो इतना मशहूर हुए थे। ठीक है, उनका पहले पहले जब वो शुरू किया था उन्होंने एडवर्टाइजिंग जो जिंगल्स होते हैं ना वो गाया करते थे। और लेकिन जो भी वो करता था बड़ा

से करता था दोस्तों, क्या आवाज, अ बिग लॉस। जी हाँ, ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स टू दोस्तों, बहुत पसंद करता था मैं। इस बार सुनिधि चौहान और शैल हड्डा।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म गुजारिश का गीत अभी आपने सुना और इस समय 14 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। और चलो, अगर आज आपका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे, हमेशा भूल जाता हूँ। अमिता, बहुत कुछ ऐसे होते थे जो अमिता के ऊपर मैं छोड़ दिया करता था, और एक आदत सी पड़ गई है, जो रिलायंस होता किसी के ऊपर अच्छी बात नहीं है दोस्तों। खैर चलो, मिस करता हूँ मैं ज़रूर, क्योंकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाया करता था, और आने वाले मंडे से, सोमवार से वो साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो चले अगला जो गीत है। देखिए दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं, शुरू में अच्छा लगता है, फिर उसको हम फाइल करके रख देते हैं ड्रॉ में, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो दिल को छू लेता है और हमेशा साथ में रहता है। और जब कोई व्यक्ति जो गाता है उससे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत लाइकेबल पर्सनैलिटी हो, तो वो गीत और अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगला जो गीत है, इसे गाया है जावेद अली ने, और वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, उसको मिला और उसका कॉन्सर्ट भी देखा मैंने, और वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। अगर आप भी देखे होंगे तो आपको भी अच्छा लगा होगा। वन ऑफ द वेरी बेस्ट शोज दैट आई वॉच्ड, यानी जावेद अली का। तो चले, प्यारा सा गीत है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मिज़बानी, आपकी अपनी पहचान, भूलना मत। इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, और सताक्षी इट हैपन्स प्रोग्राम लेकर आएंगी, और फिर 11 बजे से आप हो जाएंगे अपने पंजाबी प्रोग्राम संदेश के साथ, और फिर 3 बजे से निविया के साथ, तो सुनना ना भूले दोस्तों। चलिए अगला जो गीत है, इसके जो गीत को आवाज़ दी है राहत फतेह अली खां और साथ में है सुनिधि चौहान, और जो म्यूज़िक है मेरे ख्याल से साजिद वाजिद ने दिया है, और फिल्म वीर का गाना है। आपको याद है ना इस गीत में सलमान खान और जरीना खान, जी हाँ। तो चले, एक कैसा गीत है दोस्तों, और इतना सुरीली आवाज़ है दोस्तों राहत फतेह अली की, और इसीलिए ये हमेशा सुनने भी इच्छा लगता है दोस्तों। तो चले सुनते हैं

क्या क्या शब्द ढूंढ लेते हैं एक्सप्रेशन के लिए, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराना नोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक फ्लूट है, जो लगभग 40,000 ईयर्स मानी जाती है, यू नो दैट। और देखिए, आपके जो फिंगरप्रिंट्स है ना, उसी तरह आपका जो टंग है, जिबा, इसका जो प्रिंट भी यूनिक होती है। दुनिया में किसी दो लोगों की टंग प्रिंट एक जैसा नहीं होती है। इतना यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, है कि नहीं? अच्छा, ये कैसे काम आएगा? आई डोंट नो। खैर चलो, शायद ये फोरेंसिक के लिए होगा, ये जब आइडेंटिफाई करते होंगे या कुछ। ठीक है, चलिए, अलका अलका याग्निक और उदित नारायण से आप सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो मेजबानी सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान, नंबर है 04300031701। और किसी ने मेरे पास अभी भेजा कि सलमान खान का बहन अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सलमान खान जो कल गया था एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, उनका बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड यानी कुमुद रने उनका नाम, लेकिन कुछ हेडलाइन ऐसे लिख दिए कि इमोशनल वर्ड्स कुछ उन्होंने यूज किया लाइक सिस्टा ना। कभी कभी हम सब बहन भाई बहन बना लेते हैं और इन अ फिगरेटिव वे, बट इट वॉज नॉट हिज रियल सिस्टा। उसका जो रियल सिस्टा है उसका नाम है अर्पिता अलविरा। तो ये सही नहीं था, बट यस समवन वेरी क्लोज टू हिम वो गए थे उनके फ्यूनरल में। तो चलो ये क्लियर हो गया है और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, और चलते हैं, 8:06 हो गया है।

है दोस्तों प्रीतम के संगीत पर कहके और शायद कादरी से इस गीत को आपने सुना। अभी जैसे आपने सुना कि सलमान खान कितना भारी कन्फ्यूजन हो गया कि उनकी बहन जी ने उसकी बहन नहीं, हमारे एक कल्चर में एक आदत है दोस्तों, हम जब कोई अगर स्त्री से बात करते हैं या कुछ संबंध होता है तो पहले बहन बना लेते हैं, है कि नहीं? क्यों नहीं हम जैसे एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, लाइक अ फ्रेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? लेकिन हम ऐसे करते हैं और ये भारी कन्फ्यूजन होने लगता है दोस्तों। खैर चलिए अगला जो गीत है इन सभी बहनों के लिए और जो फीमेल लोग सुन रहे हैं आपके लिए गाना है। ये गाना में यही कह रहा है कि मैं बिल्कुल फ्री स्पिरिट हूँ, ये लेडी कह रही है ना, और मैं किसी के रूल्स में नहीं चलती, ठीक है, और मैं अपनी मर्जी से सब काम करती हूँ, अपनी मर्जी से मैं जीती भी हूँ, ठीक है, मैं खुश रहती हूँ, केयर फ्री रहती हूँ और मुझे टेंशन या सैडनेस से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। शायद इस गीत में यही कह रहे हैं, ठीक है, कहके और वसुंधरा दास से आप सुनेंगे।

दोस्तों, उम्मीद है कि आज के गीत आपको पसंद आ रहे हैं। कुछ पुराने गीत थोड़ी देर में लेकर आऊंगा, कल तो मैं लेकर आऊंगा पुराना गीत भी, मिक्स करेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो हमारे जो लेडीज है, हमारे जो बहना लोग हैं, वो किसी से कम नहीं है। जी हाँ, अगर सच पूछो तो वो मर्दों से ज़्यादा काम करते हैं। पहले एक ज़माना हुआ करता था व्हेन दे यूज्ड टू बी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन अब नहीं। अब बच्चा पैदा करना, बच्चा बच्चे को पालना, फिर घर का काम करना, फिर आउटसाइड जाकर काम करना, बिकॉज अदरवाइज घर भी लेना मुश्किल होगा, दोनों को काम करना पड़ता है आजकल, है कि नहीं। तो कहते थे कि पति जो है भगवान की तरह है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ जो आपकी बीवी है वो किसी से कम नहीं है दोस्तों।

ये जो गाना था दोस्तों, ये आप सभी के लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए जिनका नाम है मोनिका। और यहाँ पर मैं जानता हूँ ब्रिस्बेन में एक हमारी लिसनर है, उसका नाम है मोनिका। मालूम नहीं मिला हूँ या नहीं मिला हूँ, लेकिन हाँ रोज रेडियो सुनती है क्या बात है। और चले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहते हैं कि जिंदगी कोई जिंदगी को कल नहीं आज जीने का नाम है, ठीक है। आज ही जियो इन द प्रेजेंट मोमेंट, कल कौन जानता। कल जो बीत गया तो बीत गया, और जो आने को है मालूम नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस पल जो है ये तो पॉजिटिव है ना, तो इस पर जियो आप और एंजॉय करिए दोस्तों, बिकॉज वी नॉट हियर फॉर एवर, लाइफ इज शॉर्ट एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। चलिए, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया लता मंगेशकर और साथ में रफी साहब।

और देखिए दोस्तों, रफ़ी साहब वर्सेटिलिटी के लिए उसको माना जाता है। वो रोमांटिक गाना भी गा लेते हैं थे, सैड गाना गा लेते थे, और डिवोशनल भी बहुत सुंदर सुंदर डिवोशनल गीत उन्होंने गाया है, कव्वाली भी उन्होंने गाया है ना, हर अंदाज में उनकी जो आवाज़ लाजवाब दोस्तों। और आई हैड अ गुड फॉर्चून ऑफ मीटिंग रफ़ी साहब, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। जी हाँ, बहुत साल पहले। तो और आगे कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। जो गीत मैंने चुना है, नेक्स्ट गाना रफ़ी साहब का गाया हुआ, और ये है फिल्म आप तो ऐसे ना थे का फिल्मी गीत है, और तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, याद है गाना? चलिए, अगर नहीं सुने तो सुन लेते हैं दोस्तों। You love it.

आप तो ऐसे ना थे का गाना दोस्तों, इसका मतलब यही है जब आप दिन रात किसी के बारे में सोचते हैं, अगर देखते हैं तो वही दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये प्यार है। चलो आज कुछ पता लगा मुझे। जी हाँ दोस्तों, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। और लता जी, और इस बार आप किशोर कुमार से इस गीत को सुनेंगे, और देखा एक ख्वाब फ्रॉम सिलसिला। ये गाना जितना भी सुनो उतना अच्छा लगता है दोस्तों।

बहुत सुंदर गीत दोस्तों, मैं ढोल पर भी ध्यान दे रहा था, बहुत अच्छा लगा। और किस तरह से म्यूजिक को बदलते हैं, और इट्स एन आर्ट है कि नहीं, जिस तरह से गाना को कंपोज किया जाता है। आप सोचिए, एक डायरेक्टर या जो फिल्म बनाता है उनका दिमाग में एक सीन आता है, फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर को बताता है, नहीं जो गाना लिखता है लिरिक्स उसको बताता है क्या लिखना है, फिर म्यूजिक देने वाले उस पर म्यूजिक देते हैं, और फिर वो रियलिटी में बदलता है दोस्तों। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आशा भोसले, किशोर कुमार।

और देखिए दोस्तों, अब बहुत समय नहीं बचा है और आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इस प्रोग्राम के बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, और फिर 11 बजे से पंजाबी प्रोग्राम संदेश के साथ, और 3 बजे से भूलना मत आप हो जाएंगे निव्या के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और रफी साहब से सुनेंगे दर्द दे दिल दर्द जिगर।

और बात भी सही है दोस्तों, बस हम जुदा हो जाएंगे, नाम भी नहीं बताया आपने क्या बात। और हम निकल रहे हैं दोस्तों, आखिरी गीत है और आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रोग्राम सुनते रहे और कल मुलाकात है जी, कल मुलाकात होगी सुबह सुबह, तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलता हूँ। हैव अ लवली लवली डे और खुश रहिए, कहते हैं ना हमेशा खुश रहिए, लिव इन द मोमेंट, ओके। तो चले इस गीत के साथ मैं निकल रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज़।

0: हर दिन आपके सोच से भरा हो जरूरी नहीं है। हो सकता है कल आपने जो सोचा था, रात को आप जब सोने के लिए लेटे हो तो आपने ये सोचा हो कि यार आज का दिन ना मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि कल जो रात आपने गुजारी है आज की रात भी वैसे ही गुजरे। हो सकता है आज का सवेरा आपकी जिंदगी का नया सवेरा बन जाए। इसलिए कल रात की उदासी के साथ आज के सवेरे का स्वागत मत कीजिए। आज के सवेरे को बाहें फैलाकर, दिल खोलकर, नई उम्मीदों, नए विश्वास के साथ वेलकम करिए। उसको कहिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि हर सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उम्मीदें और नए एहसास। तो चलिए इन एहसासों के नाम आज का करते हैं इट हैपेंस और बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ हमारे सफर में आगे। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्वानी 107.1 AM।
1: चाहे वो तो वोट का काम मेरा रोस्ता ना मुझको करे के ना किसी ने रोका। चाहे वो तो वोट का काम मेरा रोस्ता।

नीचे प्रस्वानी पर सताक्षी कहती है आपको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस मेरे साथ। जी हाँ, सुबह का ताजा तरीन और खास सफर। इसके पहले कि हम इस सफर में आगे बढ़े, विश करते हैं उनको जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास। सो बर्थडे बेबीज, जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में जो पाना चाहते हैं उसके लिए कोशिश करते रहिए, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो आपके लिए सारी खुशियां लेकर आए। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की मोहब्बत, बहुत बहुत मुबारक। आपकी जिंदगी में आप दोनों का साथ यूं ही बना रहे, इसी दुआ के साथ हम विश करते हैं उन्हें भी जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। एंजॉय कीजिए आज के दिन को, और आप सबके लिए डेडिकेट करते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्वानी 1701 AM आपके साथ है सताक्षी।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। जी हाँ, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। भाई, ब्रेकफास्ट पर बातें भी ब्रेकफास्ट वाली होनी चाहिए ना, वो बातें जिनके साथ सुकून भी हो और जिंदगी में आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी हो, है ना। देखिए, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना ही लाइफ का सबसे बड़ा टॉनिक है। दोस्तों, हम करते क्या है पता है, हम ये सोचते हैं कि यार हमें कोई मोटिवेट करने वाला हो, कोई हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाने वाला हो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे ही आसपास, हमारे ही घर में, हमारी ही फैमिली में कई ऐसे लोग हैं, हमसे ही जुड़े लोग जिन्हें वाकई मोटिवेशन की ज़रूरत है, और हम उनको थोड़ा सा पुश दे के लाइफ का, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और कई ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके, उन्हें हम रिलीज़ करवा सकते हैं जो उनके खुद के लिए बहुत ख़राब हो सकते हैं, है ना। तो जरा इस पर बात करनी बहुत जरूरी है और मैं आपसे करूंगी भी, लेकिन फिलहाल एक ट्रैक को अभी सुनिए और सुनते रहिए मेरे साथ। इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 FM।

0: सो वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी पर इट हैपेंस में। आज आपके साथ फिर से कुछ जिंदगी की कुछ बेहतरीन पलों की बातें मैं कर रही हूँ। तो थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा था कि ब्रेकफास्ट शो पर थोड़ी स्पेशल बातें बहुत जरूरी होती है, लाइफ की मोटिवेशनल बातें बहुत जरूरी होती है। और देखिये ना, हमारे आसपास कई बार लोग डिप्रेशन में होते हैं, हमारे बहुत करीबी कई बार फैमिली मेंबर्स, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और जब वो कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए या जिससे हम सदमे में आ जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं चला कि इसको इतना डिप्रेशन था या इसको कोई बात इतना खाए जा रही थी। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि हम हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं। हमारे अपने ड्रीम्स, अपनी एक दुनिया है जिसमें हम हमेशा खोए रहते हैं, हमेशा हम डूबे रहते हैं। और सामने वाला क्या फेस कर रहा है, उस पर क्या गुजर रही है, ये कई बारी हम नहीं समझते हैं या हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रही थी कि यार बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये ध्यान देना कि जितना मोटिवेशन की जरूरत, लाइफ के एक पुश की जरूरत हमें है, उतना ही सामने वाले को भी है, उसे भी उतनी ही नीड है, और शायद हमसे भी ज्यादा, राइट? सो एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे को समझिए, कम्युनिकेशन करते रहिए, एक दूसरे से बात जरूर करते रहिए। और बहुत इजी होता है कई बार लोगों को पहचानना कि वो किसी स्ट्रेस में है, बस हम थोड़ा अवॉइड कर जाते हैं। ठीक है, आइए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।
1: किस मुंह से धन्यवाद करूं आपका?
2: इसी मुंह से कर दीजिए।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अपने खाली डब्बिया बोतल तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही
2: गानों की हैट्रिक। गानों की हैट्रिक में इस वक्त आपने सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। चलिए गानों की हैट्रिक का पहला ट्रैक मिलकर साथ में एंजॉय करते हैं।

गानों की हैट्रिक आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन पर, दोस्तों आपके साथ है सताक्षी। जी हाँ, सुबह का आपका और मेरा इट हैपेंस का साथ जो है वो गानों की हैट्रिक पर आकर थोड़ी देर के लिए थमता है, क्योंकि यहाँ तीन बैक टू बैक ट्रैक्स हम सुनते हैं। अभी ये दूसरा गाना आज के गानों की हैट्रिक का। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन।

0: रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं गानों की हैट्रिक। आइए गानों की हैट्रिक के इस लास्ट ट्रैक के साथ हमारे इट हैपेंस की ओर, हमारी बातों की ओर, हमारे किस्सों की ओर आगे बढ़ते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसवानी, सुनते रहिए इट हैपेंस। आपके साथ है सताक्षी।
1: Authentic, original, and better than our rival.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

साक्षी के साथ हैं आप और ये है इट हैपेंस। जी हाँ, इट हैपेंस पर मेरा आपका साथ बरकरार है, जारी है और आगे भी भाई हमारा आपका साथ जारी रहेगा। विटामिन सी और विटामिन डी, हाँ ये दोनों ही बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, ये दोनों ही विटामिन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार जब इनकी कमी बॉडी में होती है तो हम ये सोचते हैं कि यार हम सप्लीमेंट्स लेकर के और इस कमी को पूरा कर लेंगे, लेकिन कई बार एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आप विटामिन की कमी को या बॉडी में अगर कोई भी डेफिशिएंसी है किसी भी विटामिन की तो उसकी कमी को आप कभी भी सप्लीमेंट से पूरा नहीं कर सकते, वो बात नहीं आती। तो नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू आप अपनी बॉडी में वो कमी जो है पूरी कर सकते, जैसे सिट्रिक फ्रूट खा के आप अपनी बॉडी का विटामिन सी कंप्लीट कर सकते हैं खाने पर अगर आप ध्यान दें, और आप विटामिन डी की कमी को अगर पूरा करना चाह रहे हैं तो धूप से बेटर सोर्स आपके लिए और कुछ भी नहीं है, राइट? सो बहुत सारे लोग आजकल सन बाथ ले रहे हैं, सन बाथ का कॉन्सेप्ट सामने आया, बहुत जरूरी है ये कि आप खुद पर फोकस करें, अपनी बॉडी पर, अपने विटामिन पर फोकस करें और उन्हें नेचुरल सोर्सेज के साथ कंप्लीट करें। ठीक है जी, आइए एक और सताक्षी के साथ ट्रैक सुनिए अभी और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वान

यह सताक्षी के साथ हैं आप इटहैपेंस में और इटहैपेंस रेडियो प्रस्थानी पर मेरे साथ आप एंजॉय कर रहे हैं सुबह के कुछ खास गाने, कुछ बेहतरीन गाने और मेरा और आपका साथ। देखिए जिंदगी में कई बार आप एक ऐसे फेज में आ जाते हैं जहां पर आपको जरूरत होती है कि यार कोई हो जिससे हाल दिल बयां कर दिया जाए, कोई हो जिससे एक जो दिल में उलझन चल रही है उसको कह दिया जाए, है ना। और कई बार आपको आज के टाइम पे एक ऐसा सोर्स नहीं मिलता है। देखा जाए तो हजारों फ्रेंड्स हैं हमारे फेसबुक की लिस्ट में, हमारे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन वो एक बंदा जिसके साथ दिले जज्बात शेयर करके दिल को थोड़ा करार मिल सके, ऐसे फ्रेंड्स या ऐसा एक इंसान जो है वो ढूंढना मुश्किल हो गया है। रिलेशनशिप में भी जब आप हैं आज के टाइम पे तो दो लोग हैं तो रिलेशनशिप में, लेकिन दोनों की अपनी ही एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे के साथ, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कहें इसके पहले सामने वाला इतनी एक्सपेक्टेशंस दिखा देता है कि फिर उससे कहने का भी कुछ दिल नहीं करता। सो भाई देखिए कभी कभी ना आज के वक्त में कहूंगी कि अपने आप को समझने के लिए हमें ही आगे आना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये वक्त वो वक्त है जहां पर सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये बार बार शोज में रिपीट कर रही हूँ कि जो बढ़ता स्ट्रेस है उसे निकलने के लिए सेल्फ टॉक की आदत डालिए, खुद से बात करना बहुत जरूरी है और खुद की पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप कीजिए कि आप थोड़ी देर बैठ के अपने आप से बातचीत कर सकें। आप देखेंगे कि आप इतना ट्रेंड हो जाते हैं कि आप अगर सवाल करेंगे तो उसके जवाब आपको मिलने शुरू होते हैं। तो मी टाइम निकालना बहुत जरूरी है और मी टाइम ये वो टाइम नहीं है जिस टाइम में आप अपनी हॉबी से कनेक्ट करें, जैसे कि हम कहते हैं आपसे कि भाई मी टाइम में वो करिए जो हॉबी है, नहीं, ये वाला मी टाइम वो मी टाइम होना चाहिए जहां आप खुद से कनेक्ट कर पाए। आज के टाइम पर बहुत जरूरी है जब आप अकेला फील करते हैं, और ये वाला टाइम जैसे ही आप इंजॉय करने लगेंगे ना, आपको किसी और के साथ की, किसी और के सहारे की उतनी नीड नहीं रह जाती है, आपको खुद की कंपनी में मजा आने लगता है। सो बहुत जरूरी है आज बदलते दौर में जब किसी के पास हमारे लिए वक्त नहीं है, खास करके देखा जाए तो हमारे पास भी शायद किसी और के लिए वक्त नहीं है उतना, है ना। तो खुद का टाइम हमें खुद ही बनना पड़ेगा, खुद का टाइम, खुद की बातें हमें खुद के साथ ही शेयर करनी पड़ेंगी। सोचिए मेरी बात को और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। चलिए आपको आगे लेकर चल रही हूँ एक और ट्रैक के साथ।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready, Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स. तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट.
4: आज